आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

इन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की विचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए उन साधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, उन साधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर।

दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास फिर पॉलिटिकल मैंडेट है, फिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफपीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब वेस्ट

का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में मैं सप्त धारा की बात करता हूं। सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G
हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूरे में उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिफ्ट आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। हमारे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तो भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। आज वो साइबर सुरक्षा भी हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है, दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वर्ल्ड समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत की क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। चिंता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों
आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। पल्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां देश सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। यहां हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फुल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो पिछले 10-12 साल में दिशा में बहुत कुछ हुआ है, स्टार्टअप इंडिया अभियान, पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए,
देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर। देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 2014 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 2014 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1,000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा हमने अनेक रास्ते खोले, स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2,50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, तो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज
बनाने की दिशा में हमने

0: सफलता पाई।
1: मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपने उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। देश के नौजवानों के लिए मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। अगर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है, इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की खूबसूरत सी सुबह 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस की सुबह है और आप सभी सुनने वाले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। और दोस्तों, आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसे मजबूत और बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने देश के लिए एक छोटा सा संकल्प लें, ईमानदारी से काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें और अपने भारत को हर दिन थोड़ा और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे दिल में भी हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। जय हिंद, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवरीवन। और आप भी मेरे साथ आज की सुबह कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मैंने देखा, जब मैं ऑफिस की तरफ आ रही थी तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए स्कूल जा रहे थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो दोस्तों, सुनते हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत आज की सुबह में देशभक्ति गीत लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा, जल्दी से मैं इंतजार कर रही हूँ आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग, बिंदास। Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिन्हास मॉर्निंग शो में। देखिए आज आरजे आनंद जी तो नहीं आए हैं, बट हाँ आज खुशी जी यहाँ पर आ चुके हैं। और आज आनंद सर बाहर हैं मुरादाबाद सिटी में। क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या कुछ स्पेशल हो रहा है, सब आपको अपडेट देने के लिए वो बाहर हैं और हम स्टूडियो में हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और अभी आपको राइट नाउ टाइम बता देते हैं, वक्त हुआ है 8:52।

दोस्तों, आज है 15 अगस्त और एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में खास जगह रखती है। तो चलिए आज के इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि 15 अगस्त हमारे लिए इतना खास क्यों है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब करीब 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत का स्वतंत्र राष्ट्र बना। एंड इसी ऐतिहासिक अवसर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। ये भाषण भारत की नई आजादी और नए सपनों की शुरुआत का प्रतीक बना। और दोस्तों, इतिहास का एक और दिलचस्प पन्ना, 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिससे देश भर में डाक पहुंचने की व्यवस्थाओं को और भी व्यवस्थित बनाया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया के कुछ अन्य देशों के इतिहास में भी भारत 15 अगस्त राष्ट्रीय दिवस का स्वतंत्रता से जुड़ी महत्व तारीख है। और दोस्तों, अभी और भी बातचीत आपसे हम करने वाले हैं। दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये हमारे संघर्ष, बलिदान, आजादी और नए भारत के सपनों की कहानी है। आज जब तिरंगा आसमान में लहराए तो उन अनगिनत वीरों को जरूर याद कीजिएगा जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज आजादी से जी पा रहे हैं, आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैंने आपसे कहा था कि श्रोताओं, आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद हम भी कनेक्ट हो जाते हैं आरजे आनंद जी के साथ। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आई लव माय इंडिया, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलते हैं अभी आपसे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ, और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है अब स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं, राइट नाउ 9:06 हो चुके हैं, और हमारे पास यहाँ पर आप सभी के खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं। Once again, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी, और ये कहते हैं आपको और सभी रेडियो एफएम मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं को हमारी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? आप सभी को और कहते हैं कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर। अगला मैसेज हमें पहुंचाते हैं यहाँ पर दुर्गेश सैनी जी, एंड ये मैसेज पहुंचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, और ये भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमें पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है पलिताना गुजरात से मधुभाई चौहान जी का, और ये भी आज की सुबह शुभकामनाएं पहुंचाते हैं हमें, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर 15 अगस्त की। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राजा कश्यप जी का, और कहते हैं कि मैम हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सेम टू यू सर। एंड दोस्तों देखिए मुरादाबाद में क्या एक्टिविटीज हो रही है वो मैंने आपसे कहा था ना कि अभी हम आनंद सर को जोड़ने वाले हैं, और वो बताएंगे अभी बाहर का करंटली कैसा माहौल है, तो उनसे जुड़ने वाले हैं हम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और दोस्तों सबसे पहले सुन लेते हैं मुरादाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पिंचा जी का स्वतंत्रता दिवस विशेष संदेश, और

0: थैंक यू सो मच सर। एंड अब सुन लेते हैं दोस्तों मुरादाबाद के SP कुंवर आकाश जी का स्वतंत्रता दिवस पर विशेष शुभकामनाएं संदेश।
1: मैं मुरादाबाद FM 89.6 की सभी ऑडियंस को मुरादाबाद पुलिस की तरफ से आई विश हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ये जो इंडिपेंडेंस डे हमारा है, ये देश की स्वतंत्रता पर मनाया जा रहा है, तो हमें भी अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं जो भी हैं, हम सबसे स्वतंत्रता पाके एक आपस में भाईचारे के साथ में देश के लिए काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सर।
0: और दोस्तों अब सुन लेते हैं SP ट्रैफिक श्री सुभाष गहलवान जी का स्वतंत्रता दिवस विशेष संदेश आज की सुबह। सर क्या पहुंचाते हैं?
2: मैं सुभाष गंगवार SP ट्रैफिक मुरादाबाद। FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और मुरादाबाद वासियों को हमारी तरफ से ढेर सी शुभकामनाएं।
0: आप सभी देशवासियों को भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे और जोड़ेंगे। अभी आनंद सर को कनेक्ट करने वाले हैं हम कि बाहर मुरादाबाद, अपने मुरादाबाद शहर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है सब आपको पता लगेगा। बस बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और सुनने वाले सभी श्रोताओं को हरियाली तीज के इस खूबसूरत पर्व पर आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में प्रेम, खुशियां और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे। एंड हर हर महादेव। दोस्तों हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि हम आज आरजे आनंद जी को कनेक्ट करने वाले हैं कि मुरादाबाद सिटी में क्या स्पेशल हो रहा है आज, कहाँ कुछ क्या चल रहा है, तो सब जानने के लिए हम आरजे आनंद जी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। अभी लाइव उनसे बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे उनसे कि मुरादाबाद शहर में क्या कुछ हो रहा है। वैसे दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं स्पेशल। हाँ जी बताइए बताइए। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा, तो फटाफट से आप मैसेज पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और हमारे पास खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग।
1: जी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइए आनंद सर कैसे हैं?
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी कैसा चल रहा है शो? सबसे पहले तो सभी लिसनर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो लोग अभी मुझे रेडियो पे सुन रहे हैं। और हम रेडियो से तो नहीं लेकिन रेडियो से बाहर आज हम लाइव हैं, क्योंकि बाहर एक्टिविटी क्या चल रही है शहर में ये भी तो बहुत जरूरी है ना जानना आरजे खुशी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हमने आपको कनेक्ट किया है ना सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सैटरडे की सुबह सबसे पहले आप सभी को आज हमारा 80 स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इंडिपेंडेंस डे सिर्फ आजादी का जश्न नहीं है, ये जश्न हम सभी के एकता का पर्व है ना। तो आज इस खूबसूरत पर्व की तमाम मुरादाबादी को जहां जहां मेरी आवाज जा रही है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त की 1947 में सभी को पता है आज के दिन हमें आजादी मिली, और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें आजादी चाहिए और जरूर हमें उन चीजों से भी आजादी मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज वक्त है, ये टाइम है सेलिब्रेशन का, तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त आरजे खुशी मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेडियम में और यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। उससे पहले हम लोग पुलिस लाइन में मौजूद थे और अभी हम लोग रेलवे स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रांगण है जिसके अंदर खूबसूरती के साथ जो है परेड हो रही है, तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की एक्टिविटीज चल रही है और बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है आज 15 अगस्त का। और लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, पूरी जो है वाइब फुल ऑन यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की लगी हुई है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आसपास में कोई मुझे सुन रहा है तो वो जरूर यहाँ पधारे, और यहाँ का जो माहौल है बहुत खूबसूरत है। तमाम छोटे छोटे बच्चे जो अपनी परफॉर्मेंस लेके वेट कर रहे हैं, तो काफी कुछ है जो आज 15 अगस्त के मौके पे मुरादाबाद में बहुत खूबसूरती के साथ चल रहे हैं प्रोग्राम्स लगातार।
0: ओके तो जो अभी समय राइट नाउ लिसनर सुन रहे हैं, अगर वो भी वहां जाना चाहे तो पहुंच सकते हैं ना?
1: हाँ बिल्कुल, अभी जयरिम मैम है वो अपना स्पीच कर रही हैं, और ये जयरिम का ही रेलवे स्टेडियम है, रेलवे का स्टेडियम जहाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरती के साथ जो है यहाँ पर परेड अभी होने वाली है, राष्ट्रीय गान जस्ट अभी संपन्न हुआ है, तो तमाम तरह के और भी प्रोग्राम और गतिविधियां लगातार जारी है यहाँ पर। तो मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा इंडिपेंडेंस डे का शो चल रहा है। और बाकी मेरी तरफ से एक बार फिर से वंस अगेन सभी लिसनर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि हर टाइम रेडियो पे बैठ के हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कभी कभी बाहर भी निकलना जरूरी होता है।
0: एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और बाकी तो अभी आपने हमारे जो बहुत खूबसूरत मुरादाबाद के रियल हीरोज हैं उनकी आपने विशेष सुनी, हमारे डीएम साहब की सुनी, हमारे एसपीआरए साहब की सुनी, एसपी सिटी एसपी ट्रैफिक सर की सुनी, तो ऐसे तमाम सारी और भी तमाम धुरंधर जो हमारे रियल हीरोज हैं जो 24/7 हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, आज उनकी मैसेज और वाइब पूरा दिन सुनते रहेंगे हमारे एफएम पे। तो एक बार फिर से एफएम सुनने वाले सभी लिसनर्स को वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप इस आजादी के जश्न को सेलिब्रेट कीजिए, अगर आप भी कहीं निकल रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी कीप लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद विद आरजे खुशी। एंड अभी मैं प्रोग्राम का और ज्यादा अपडेट लेने के लिए निकल रहा हूँ आगे, और जो भी अपडेट होगी वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे डेफिनेटली आप ढूंढ सकते हैं, हमें वहां आपको अपडेट मिलेगी। एफएम मुरादाबाद की आईडी है एफएम मुरादाबाद के नाम से, और बाकी मुझे भी आप ढूंढ सकते हैं, वहां भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी।
0: थैंक यू सो मच आनंद सर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए. सेम टू यू सर, बाय बाय. तो चलिए एवरीवन, ये तो फिलहाल हमारी मॉर्निंग जॉब की बातचीत हो गई है. आप सभी ने सुनी ली है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके. देखिए अब हमारे मुरादाबाद में और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है वो भी मैं आपको लगातार बताने वाली हूँ. तो बस बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6. और अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत. लेकिन हाँ, उससे पहले एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, वो भी बहुत जरूरी है.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
4: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ. मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका. द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग शो एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय वंडरफुल लिसनर्स. और मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे कि खुशी जी कब आएंगी, तो हम आ गए. और दोस्तों, बात कर लेते हैं अब अपने मुरादाबाद शहर के. जी हाँ, मुरादाबाद से स्वतंत्रता दिवस की खास तस्वीरें सामने आ रही हैं. शहर और कुंदर के विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैलियों और देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. स्कूलों और एनसीसी स्थानों में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति कार्यक्रमों के जरिए आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है. वहीं मुरादाबाद के प्रमुख चौराहे और रेलवे स्टेशन तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहे हैं. पूरे शहर में देशभक्ति का खूबसूरत माहौल बना हुआ है. बात करें अगर मौसम की, तो आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री रह सकता है. हालांकि गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद शाम के समय में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछार की संभावनाएं हैं. तो देशभक्ति के रंग में रंगी मुरादाबाद के साथ और जुड़ी रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. जय हिंद, जय भारत. और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आया है सनी अग्रवाल जी का मुरादाबाद से. मुरादाबाद कांशी रामनगर से ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं और ये कहते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम, सेम टू यू सर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. ये ललिता जी हमें गुड मॉर्निंग विश करती है नवीन नगर मुरादाबाद से. और कहते हैं कि आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी मैम, एंड हैप्पी हरियाली तीज. और उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं आज की सुबह, कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, देश का मान बढ़ता जाए, हर दिन में भारत बसता जाए, हर दिल में भारत बसता जाए, तिरंगा शान से लहराए, वीरों की कुर्बानी याद रहे, मिट्टी का सम्मान रहे, जब तक सूरज चांद रहे, भारत माँ का नाम रहे, वंदे मातरम मैम. एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को. और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग जिला रामपुर से मैसेज हमें पहुँचाते हैं. इन्होंने नाम नहीं लिखा, बस गुड मॉर्निंग विश किया है हमें. और हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है, तो उसको भी हम जल्दी से सुन लेते हैं कि आज की सुबह हमें क्या पहुँचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स.
1: कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का. नमस्कार, राधे राधे. आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 एफएम. सुनते रहिए, बचाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए. सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा से. स्वतंत्रता दिवस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के मुख्य त्यौहार को भी ना भूलें. आप सभी को हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबके जीवन में भगवान शंकर माँ पार्वती खुशियां लेकर आएं और देश के साथ साथ इस देश के सभी लोग तरक्की करें और खुश रहें. नमस्कार, राधे राधे. सुनते रहिए फिर मुरादाबाद आरजे खुशी के साथ. मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पाकबड़ा से. नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी की हरियाली बीच।
0: थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपने इतना प्यारा सा वॉइस नोट पहुंचाया आज की मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी तरफ से भी एफएम मुरादाबाद की पूरी टीम को और सुनने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सेम टू यू सर। और दोस्तों मुरादाबाद में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए आपको अगर जानना है एंड कि मुरादाबाद शहर में क्या हो रहा है, तो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6, इंस्टाग्राम पर जाइए एंड वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी कि आज मुरादाबाद में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है। और मैं आती हूँ बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है विनास मॉर्निंग शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस पर इस खास अवसर पर एंड आज के दिन दोस्तों देश की विविधता, सांस्कृतिक और परंपराओं की एक खूबसूरत झलक की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस के समारोह के परिधानों में हर साल एक खास चीज देखने को मिलती है। उनकी अलग अलग रंग और डिजाइन की पगड़ियां, कभी राजस्थान की रंग बिरंगी पगड़ी, कभी तो गुजरात की पारंपरिक झलक, तो कभी देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती खास पगड़ी। हर अंदाज अपने आप में भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता की कहानी कहता है। दोस्तों, हर साल बदलती ये पगड़ी सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि भारत की अलग अलग लोक परंपराओं, रंगों और विरासत को सम्मान देने का एक खूबसूरत अंदाज भी नजर आती है एक खूबसूरत अंदाज में भी नजर आती है। और आज तिरंगे के रंगों के साथ याद कीजिए उन खास पगड़ियों को जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मंच पर हर बार एक नया रंग और एक नया अंदाज जोड़ा, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि हर रंग अनेक पर दिल एक। और आप सुनते रहिए बस ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6। देखिए, स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ वक्त हुआ है 10:02 और अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है। नेक्स्ट शो लेकर हाजिर हैं आरजे रीना जी। और दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी के समुद्र तट पर देशभक्ति की एक खूबसूरत बेहद तस्वीर देखने को मिल रही है। मशहूर रेत कलाकारी सुंदर पर्यटन ने विविधता में एकता की थीम पर शानदार रेत की कलाकृति तैयार की है। रेत पर बनी इस कलाकृति के जरिए भारत की एकता, विविधता और देश प्रेम का खूबसूरत संदेश उसमें झलक रहा है। वाकई कलाकार के जरिए देशभक्ति का ये अंदाज दिल को छू लेने वाला है। एंड आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को एंड देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए और मिलजुल कर एकता के साथ ये खूबसूरत सा पर्व सेलिब्रेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए। यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव, मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव, मेरी धरोहर।
1: मेरी

0: वीरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है जी श्रोताओं। मॉर्निंग में साला शो में कनेक्ट हो गई हूँ और आप सभी को, देखिए आप सभी रेडियो सुन रहे हैं तो एक बार आपने सभी को बोलना है जय हिंद जय भारत, क्योंकि आज है 15 अगस्त। और आज यानी कि देश दुनिया में, गली मोहल्ले में, स्कूल कॉलेज में, यानी कि सरकारी दफ्तरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ झंडारोहण तो हो चुका है। देखिए बहुत से सो रहे होंगे तो भाई आपकी गलती है कि आपने मिस कर दिया है, क्योंकि आपने आज हर घर में भाई हर बच्चे बड़े से लेकर टीवी के आगे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आज हरियाली तीज भी है, तो आप सभी को हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बातें करेंगे। बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि आज है एक अलग ही उत्साह है आज, यानी कि पूरे देश में अलग ही रौनक है। अब अगर अभी तक आपने घरों पर अपने यानी कि झंडा नहीं फहराए तो प्लीज यार लेट मत कीजिए, जल्दी जाइए और फोटो क्लिक करिए और हमें भेजिए भी कि हमने अपने छतों पर झंडा फहरा दिया है। 15 अगस्त बस तारीख नहीं है, ये देश का अभिमान है। जिस मिट्टी पर जन्म मिला उस मिट्टी की पहचान है। ये उन वीरों की कहानी है जिन्होंने जीवन दे डाला, भारत माता की आजादी के लिए हंसकर त्याग दिया उजाला है। ये भगत सिंह की हुंकार है, ये बापू का विश्वास है, ये सुभाष की ललकार है, ये हर वीर का प्रयास है, ये तिरंगे की शान है, ये भारत की आन है। हर भारतीय के सीने में धड़कता हिंदुस्तान है, ये सीख है कि देश बड़ा है। हम सब बाद में आते हैं, मिलकर चलो तो मुश्किलें रास्ते भी आसान हो जाते हैं। ये केवल झंडा फहराने और मिठाई खाने का दिन नहीं है, देश के लिए कुछ करने का संकल्प लीजिए। कोई साधारण दिन नहीं है, जहां मिले किसी को सहारा वहां अपना हाथ बढ़ाना, अपने छोटे छोटे कर्मों से भारत को आगे बढ़ाना, नफरत छोड़कर प्रेम चुने, यही सच्ची पहचान है। हर दिल में भारत पहले हो, ऐसा अपना हिंदुस्तान हो। और भारत माता की जय श्रोताओं, हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात पूरी यानी कि 15 अगस्त पर करने वाले हैं, साथ ही साथ आज इवनिंग मस्ती शो में भी आप प्रॉपर जानेंगे कि हमारे देश आजाद कैसे हुआ था। मतलब शॉर्ट शॉर्ट में आप सभी के लिए मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। तो देखिए शाम को भी इवनिंग मस्ती में, यानी कि सैटरडे है और सैटरडे को अक्सर होता है कि मैं इवनिंग मस्ती शो में नहीं आती हूँ, लेकिन आज आप सभी के लिए कुछ खास है तो सुनना बिल्कुल ना भूले। और अभी के लिए एक देशभक्ति गाना आप सभी के लिए प्ले करेंगे। मुझे ये गाना सच बताऊं बहुत बेहद पसंद है, आई होप कि आप सभी को भी बहुत पसंद है ये गाना। और इसको यानी कि देशभक्ति जो ये गाना है इसको सुनेंगे और फिर कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे, तो बस बेधड़क बिंदास रहिए। कहते हैं ना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं पहले गाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। जय हिंद, जय भारत। और आज है यानी कि हरियाली तीज भी। और समय की बात करूँ तो 10:29 हो चुके हैं श्रोताओं। और साथ ही साथ देखिए, आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है? अक्सर हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, कोई भी सेलिब्रेशन हो, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि उसके बारे में आखिरकार जाना जाए कि आखिरकार ये मनाया क्यों जाता है। भगवान शिव को यानी कि पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या करी थी और भगवान शिव ने भी उनकी परीक्षाएं बहुत ली। और जब यानी कि माँ पार्वती परीक्षाएं में सफल हो गई, तब जाकर उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और आपको पता है कि हरी चूड़िया और मेहंदी इस दिन के लगाने का बहुत शुभ दिन माना जाता है। और आखिरकार ये लगाया क्यों जाता है और सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो मैं आपको बताती हूँ। इसकी शुरुआत यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने की थी। यानी कि देखिए, जब माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह यानी कि जब तय हुआ था, तब सभी देवताओं ने तरह तरह के आभूषण, सोने, चांदी, हीरे, ज्वाला माँ पार्वती को गिफ्ट में भेंट कर रहे थे। लेकिन भगवान शिव सोचने लगे कि आखिरकार सब तो उनको हर चीज़ दे रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मैं क्या दूँ। उनके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा। तब उन्होंने यानी कि कांच की हरी चूड़िया बनवाई और खुद भेस बदल कर वो यानी कि हिमालय पर्वत पर यानी कि माँ पार्वती के घर गए। लेकिन अफसोस कि उस भेस में उनको किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन जब माँ पार्वती की कलाई पकड़कर वो चूड़िया पहनाने लगे तो उन्होंने पहचान लिया और माँ पार्वती ने पूछा कि आप यहाँ? तो उन्होंने बोला कि देखिए देवी, आपको हर देवी देवता आपको तरह तरह के आभूषण दे रहे हैं, आपके पास सब कुछ तो है, मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल होना चाहिए। तब से यानी कि सावन के महीने में और हरियाली तीज मनाई जाती है और इस दिन खासकर महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं, अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है और सुहागन रहने की कामना करती हैं। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही प्यारी दो जिसको हम हमेशा बोलते हैं, हम अपने हम शब्द बहुत बार सुना होगा, है ना, कि आखिरकार ये हम होता क्या है, ये दोनों मिलाकर आखिरकार क्या बन जाता है। वैसे हम ही होता है लेकिन हा म क्या है? तो देखिए, ह से हिंदुस्तान, म से मुस्लिम, और ह म जब मिलते हैं तो बनते हैं हम। यानी कि हम सब एक समान हैं, भाई बहन हैं और मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो भगवान के जो हर किसी के अंदर एक ही ब्लड के कलर होते हैं, लाल। ये तो नहीं मेरे अंदर लाल है, आपके अंदर पीला है, ग्रीन है, किसी के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर लाल ही खून है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो। और पहली बात तो जाति धर्म हम सभी ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए, उनके लिए तो हम सब एक समान हैं। इसीलिए हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने देश के प्रति जज्बे होने चाहिए, उनके लिए काम करिए। ये नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त वाले दिन ही आपके अंदर एक जुनून आए कि याद 15 अगस्त है, बल्कि हर दिन आपको अपने देश के लिए कुछ छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए। और एक दिन वो दिन आएगा जब आप बड़े काम करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, हमेशा अपने देश के लिए गर्व करिए, अपने देश के लिए कुछ करिए। और चलिए फिलहाल मैसेज के बारे में। रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गाना सुनना चाहती है, मेरा हिंदुस्तान। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इशाद सैयद शारिक अली जी कनेक्ट हो गए हैं, मेराज अंसारी और इनके और भी दोस्त हैं बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। सैटरडे में मॉर्निंग मसाला शो आपको सुनकर अच्छा लगता है, आज स्वतंत्रता दिवस है
और हमारी तरफ से पूरे एफएम परिवार को और सभी सुनने वाले साथियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये आज गाना सुनना चाहते ऐसा देश।

विक्की सागर जी का मैसेज आ गया भैया, ये बोलते हैं हरियाली तीज और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी जी हार्दिक शुभकामनाएं। अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम रीना जी, जय हिंद जय भारत, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर और सभी देशवासियों को स्वतंत्र

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गे सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। भैया आज तो मुरादाबाद की गली मोहल्ले यानी कि सरकारी दफ्तरों और पीली कोठी या रेलवे स्टेशन को मतलब अच्छे से डेकोरेश काफी दिन पहले कर दिया गया था और आज जो देश का यानी कि मुरादाबाद का मौसम है वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ी उमस वाली गर्मी है और साथ ही साथ हर तरफ उत्साह ही उत्साह है। तो अपने देश के लिए गर्व करिए। और मैंने आप सभी से बोला था कि देखिए फोटो खींच के आपने मुझे शेयर करना है कि आप सभी ने अभी तक अपने छत पर झंडा फहराया है नहीं फहराया, प्लीज जल्दी करिए तभी मजा आएगा। देखिए आज 15 अगस्त है, आज कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, सच बताओ तो कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। समय की बात करूं तो 10:36 हो चुके हैं और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं आप सभी के साथ, बस कितने नहीं जाना चाहिए। आरजुरीना के साथ कनेक्ट रहना है, ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: जी गुड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में जय हिंद जय भारत। और श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं अपने शो में, यानी कि हमारे देश के माननीय यानी कि प्रधानमंत्री जी के बारे में, पीएम मोदी जी के बारे में, उनकी पगड़ी के बारे में। उनकी पगड़ी हर साल एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रौनक वाला पगड़ी देखा जाता है। यानी कि 13 साल से यानी कि लाल किले पर वो झंडा फहराते हैं और हर अलग ही पगड़ी उनकी अलग होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं 2014 की, तो जोधपुरी यानी कि बांधेज पगड़ी से हुई थी शुरुआत, और 2015 में पीली और बहुरंगी कॉफ़ी कलर में और कृषि में यानी कि उनकी पगड़ी थी। 2016 में बात करूं तो लाल गुलाबी पीले रंग की यानी कि टाइल एंड डाइल पगड़ी वाली थी उनकी, मतलब लाइन पटरिया थी। और 2017 की बात करूं तो गहरे लाल और पीले रंग की पगड़ी थी। 2018 की बात करूं तो गहरे केसरिया और लाल रंग की पगड़ी थी। 2019 की बात करूं तो पगड़ी में भारतीय पारंपरिक रंगों की झलक थी। और 2020 की बात करूं तो केसरिया और क्रीम कलर की पगड़ी थी। 2021 की बात करूं तो केसरी और लाल रंग के यानी कि पैटर्न वाली पगड़ी थी। और अगर मैं बात करूं 2022 की, तो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों वाली पगड़ी थी उनकी। 2023 में यानी कि बांधी प्रिंट वाली पगड़ी थी। और 2024 में राजस्थानीय वाली पगड़ी थी, लहरिया जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें ग्रीन कलर भी आपको दिखेंगे, केसरिया कलर भी और येलो कलर भी, यानी कि पट्टियों वाली होती है ये, और इसका कपड़ा बहुत ही स्मूद होता है। 2025 की बात करूं तो केसरिया रंग की पगड़ी थी। और 2026 की बात करूं तो यानी कि राइट नो अभी की, तो उन्होंने बांधी है पैटर्न की लाल राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई है श्रोताओं। तो यानी देखिए, 13 साल से लाल किले पर वो झंडा फहरा रहे हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कुछ से ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं। और चलिए बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ फिर से यानी कि आप सभी के बीच में लेकर आने वाली हूँ क्या, अरे आज यानी कि लाल किले में पहली बार क्या गाया गया उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि कितने साल बाद आखिरकार 2026 में गाया गया है लाल किले में, उसके पीछे की कहानी हिस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे श्रोताओं। फिलहाल अब बात करते हैं आपके जो प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं उनके बारे में, तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ यानी कि हम एक डीएम सर यानी कि राजेंद्र पेंसिया जी के, यानी कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं, तो चलिए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं आप सभी के साथ और आप सभी के मैसेज भी शामिल करेंगे। आपसे कहेंगे कि बस कितने नहीं जाना है, आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहना है। और देखिए, जब कनेक्ट रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी आप सभी तक पहुंचती रहेगी। कोशिश हमारी यही रहती है कि भैया कुछ हो ना हो, लेकिन आप सभी तक जानकारियां बहुत अच्छी पहुंचनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी मधुर आवाज में क्या कहा है, क्या संदेश दिया है।
1: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर FM मुरादाबाद 89.6 परिवार की ओर से सभी मुरादाबाद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

जी श्रोताओं, और यानी कि 80 वे यानी कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, 80 स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं हम। और चलिए देखते हैं कि किनका क्या मैसेज आया है हमारे पास। ओ, और मैंने आप सभी से पूछा है, देखिए श्रोताओं, आपने अगर अपने छतों पर झंडा फहरा दिया तो प्लीज अपने फोटो क्लिक करके भेजना है, इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करना तो आप वहां भी कर सकते हैं, मैं आपको मेंशन बैक जरूर दूंगी। आज मेरा यानी कि इंस्टाग्राम आईडी है आर्जेरीना के नाम से, आपको मिल जाएगा, आप मुझे वहां भी मेंशन कर सकते हैं, मेंशन बैक आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं किनका हमारे पास मैसेज आता है। गुड मॉर्निंग रीना जी, हैप्पी स्वतंत्र दिवस। जिला मुरादाबाद ग्राम बिजना से कनेक्ट होते हैं रिजवान खान और आरिज खान भी कनेक्ट होते हैं इनके साथ, और ओल्ड मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं, हिंदुस्तान की कसम का टाइटल गाना है, सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपको हम ये गाना सुनाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं। आजादी कोई तोहफा नहीं, ये वीरों की निशानी है, इसकी हिफाजत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सभी को हमारी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, आपको भी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामपुर से सबनम बी जी कनेक्ट।

हो गई हैं। इनके दोस्त हैं लाइबा काजमी, अफरोज फातिमा। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देशभक्ति गाना सुना दीजिएगा। अरे बिल्कुल यार, देशभक्ति गाना आपको हम डेफिनेटली सुनाएंगे, लेकिन जो आपने इतनी बारीकी बारीकी से जो लिख कर भेजा है ना, बिना चश्मे के तो मैं नहीं रीड कर पाऊंगी। कोशिश कर सकती हूँ, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप पूरे दिन सिस्टम पर देखते रहो, फिर वो भी इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली आपने स्क्रीनशॉट भेजी है लिख कर। अरे यार, माफ़ी चाहूँगी, बाद में पढ़ूंगी आपका ये जो आपने लिखा है।

हमारे पास फोटोज भी आ गए भैया छतों पर जिन्होंने झंडा फहराया है, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनेंगे, उसके बाद कनेक्ट होंगे। और आपने जो लिख कर भेजा है इतनी बारीकी से, उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल तो हम एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं। फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपने कहीं नहीं जाना है, आरजेरीना के साथ कनेक्ट रहना है। ऑल ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: इस इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति के जज्बे को बनाइए और भी खास।
5: हिंद न्यूज 9
4: FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मूवी शो। आइए साथ मिलकर मनाएं आजादी का जश्न देशभक्ति और मनोरंजन के साथ। पावर्ड बाय रिजलाल किशन लाल ज्वेलर्स, सपोर्टिंग बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्या हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन,
5: DMR हॉस्पिटल,
4: डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एवं क्रस्ट हॉस्पिटल। इस इंडिपेंडेंस डे जुड़िए इस खास पहल से और महसूस कीजिए देशभक्ति का जुनून। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय
5: हिंद न्यूज 9
4: एंड FM मुरादाबाद 89.6।
6: इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है, मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोता और समय की बात करूँ तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:05 हो चुके हैं। और आइए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, क्या बात है भैया। तो चलिए वंदे मातरम के बारे में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच, यानी कि आज 15 अगस्त 2026, जिस यानी कि हमारा देश आज आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 79 साल बाद पहली बार यानी कि लाल किले में वंदे मातरम गाया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितने साल बाद, यानी कि साल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ये लाल किले पर पहली बार ऐसा मौका मिला है कि यानी कि वंदे मातरम बजाया गया। इससे पहले कभी भी ऐसा मौका नहीं आया, ऐसा मौका कभी भी नहीं मिला कि यानी कि वंदे मातरम गाया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वंदे मातरम का कोई अपमान करता है तो जेल की सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ेगा। और अगर बात करूँ, ये 150 साल पूरे हो चुके हैं तब जाकर वंदे मातरम गाया गया। और इसकी रचना किसने की, यानी कि बंकिम चटर चौपाध्याय जी ने इनकी रचना की थी, और आज इनकी जयंती भी है, और इसी उपलक्ष्य में यानी कि लाल किले में वंदे मातरम गाया गया पूरे सम्मान के साथ। लेकिन इसकी अगर हिस्ट्री की बात करूँ श्रोताओं, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जिसको बयां करना मेरे शब्दों में, मतलब जो अगर मैं बोलने लग जाऊंगी तो मुझे लगता है कि शो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जो कहानी है, हिस्ट्री है इसके पीछे की, वो आप मतलब वो ख़त्म नहीं होगी। चलिए फिलहाल थोड़ा थोड़ा बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको बता दिया मैंने कि 150 साल बाद यानी कि पूरे करने के बाद लाल किले में गाया गया, और साथ ही साथ इसका अपमान नहीं करना आपने। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। एक मेरे पास शबनम बी जी का, उन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी थी जो बहुत बारीकी में थी, तो अब पढ़ते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। यानी कि वतन से बढ़कर कोई नहीं यहाँ जहाँ, इस वतन के लिए कर दे हर कुर्बानी वहाँ, सीने में जुनून आंखों में देश का सपना, हम देश के लिए जिए यही है अपना अपना। क्या बात है। नफरत को छोड़ो, प्यार से देश को सजाओ, एकता की डोर से भारत को और मजबूत बनाओ, हम भारत के बच्चे हैं ये हमें गर्व की बात है, देश की सेवा करना यही हमारी सौगात है, मेरा भारत महान यही मेरी पहचान है, इसके सम्मान में ही मेरी जान है। थैंक यू सो मच जी। लेकिन बहुत बारीकी वाला काम था ये, सच बताओ, जैसे सूट सिलते हैं ना इतनी बारीकी वाली, ऐसा आपने काम किया आज। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं श्रोताओं। ये मैसेज आते हैं हमारे पास, यानी कि सुप्रभात रीना जी, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये है तूफान से कश्ती निकाल कर मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों बच्चे संभाल कर, मेरे देश को रखना, मेरे बच्चे संभाल कर। क्या बात है जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है लाइन पर मुरादाबाद से, पुरानी मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम सर आपको ये गाना सुनवाएंगे। और रानी यानी कि रिहाना जी ने भी हमें फोटो क्लिक करके भेज दिया है, बकायदा वीडियो बना के भेजा है कि हमने अपने छत पर झंडा फहरा दिया है। अब आपकी बारी है, देखिए आपको भी फोटो क्लिक करके भेजना है जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो हर हर महादेव, रीना जी क्या हाल चाल है आपके, बहुत अच्छे हैं जी, और आपके आपको हरियाली तीज की और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सनी मुंबई महाराष्ट्र से, आज हमें देशभक्ति गाना सुनवा देना। बिल्कुल जी, आपको देशभक्ति गाना सुनवाएंगे, जलवा तेरा जलवा जी, बिल्कुल। तो हम चलिए आपको ये गाना सुनवाते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं, और आप सभी के और भी जो मैसेज हैं उनको भी हम शामिल करने वाले हैं।
फिलहाल आप सभी से कहीं यही कहेंगे कि कहीं नहीं जाना है, अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट रहना है। अगले मैसेज की बात करूं तो जय हिंद जय भारत, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, इनके नंबर के लास्ट

0: यहाँ की लड़की वाह, बदन पे साड़ी वाह, माथे पे बिंदिया वाह, कानों में बाली वाह, पैरों में पायल वाह, होंठों पे लाली वाह, हाय भोली भाली वाह, हाय शर्मीली वाह,
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा,
2: हमारा
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मीठी बोली बाबा
1: North, South, East or West India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: Rajesh Shivaji Baba, Akbar Basha Baba, Mahatma Gandhi Baba, Chacha Nehru Baba, Baba Ambedkar Baba, Mother Teresa Baba.
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: Taj Mahal Baba, Char Minar Baba, आम का अचार बाबा यहाँ का प्यार बाबा ऐश्वर्या राय बाबा सुष्मिता सेन बाबा ऑल इंडिया रेडियो बाबा डीडी मेट्रो बाबा दूरदर्शन बाबा यहाँ की आर्मी बाबा यहाँ की नेवी बाबा
1: So come on everybody in India come on now you know I'm telling you come on everybody in India come on welcome to India
0: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
2: सारे जहाँ से अच्छा
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट
1: कम ऑन लेट मी हियर यू से कम ऑन एवरीबॉडी से India, we love you, India, for me and you, India, from the bottom to the top, India, India, you cannot stop, India, let me see your smile, India.
3: हेलो जी इंडिया इज द बेस्ट आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं मॉर्निंग मसाला शो में श्रोताओं समय की बात करूं तो 11:20 हो चुके हैं और क्या आपको पता है कि एक ऐसी मूवी जो आज पूरे 11 साल पूरा कर चुकी है यानी कि 11 साल पहले बनी थी ये मूवी आजादी से पहले फिल्मों के जरिए यानी कि देशभक्ति की आवाज उठाई जाती थी साल यानी कि 1936 में आई फिल्म जन्मभूमि को हिंदी सिनेमा में शुरुआत देशभक्ति फिल्मों में माना जाता है यानी आजादी मिलने के करीब 11 साल पहले ही फिल्म के जरिए देश प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता रहा था और इस स्वतंत्र दिवस पर फिल्मों के साथ साथ उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने देश के लिए आवाज उठाई अपनी जान गंवाई और उनको यानी कि दिल से सलाम और उन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में हैं और अपने इस देश को आजाद के यानी कि आज यानी कि 80वें स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि इनका हमारे पास क्या मैसेज ज़्यादा है लेकिन मैसेज से पहले एक वॉइस नोट आता है मेरे पास तो उन्हें भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी मधुर आवाज़ में आखिरकार क्या कहना चाहते हैं
4: रीना मैम गुड मॉर्निंग हेलो रीना मैम गुड मॉर्निंग और 15 अगस्त की आपको आपके पूरे स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे एक सॉन्ग सुनना है अजीत सिंह का मैम संदेश से आते हैं कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे

0: गले लिखो कबुआ।
1: क्या बात है जी, बहुत प्यारी आवाज में आपने गाई है। आपको ये गाना हम डेफिनेटली सुनवाएंगे। और अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास मैसेज आया है, यानी कि बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हमारी तरफ से आपको 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। चलिए जी, और भी मैसेज।

0: अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती है। नमस्ते रीना मैम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे भाई की शादी है। हैं, अब कौन सी शादी हो रही है जी? शादियां तो बंद हो गई है शायद, मुझे लगता है कि। और ये गाना सुनना चाहती हैं, आए हम बाराती बारात लेके। अच्छा जी, बिल्कुल आपको हम ये गाना डेफिनेटली सुनवाने वाले हैं। बस आपको आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। अमित वर्मा जी का मैसेज आया आ गया है हेमगिरी मुरादाबाद से। FM मुरादाबाद के सभी चाहने वाले और सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी पहले गाना सुनते हैं, संदेश से आते हैं घर कब आओगे, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। लेकिन कनेक्ट होने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद गाना सुनेंगे और फिर आप सभी के साथ और भी अपडेट्स पहुंचाएंगे और करेंगे ढेर सारी बात ही। फिलहाल के लिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey,

0: जिद करो।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि घर कब आओगे। आरजे नीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 11:31 हो चुके हैं और आप सभी को यानी कि 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हरियाली तीज है, तो हमारी प्यारी विमनिया हैं भाई हरी चूड़ियों में और हरी साड़ी में, बहुत ही अच्छी रेडी हुई सैडी हो गई है ना जी। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करते हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये खुशबू जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से, और ये कहती है गणतंत्र दिवस नहीं है आज है यानी कि स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 यानी कि जनवरी को मनाया जाता है, और आज 15 अगस्त है यानी कि आज हमारा देश आजाद हुआ था और 15 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए श्रोताओं। चलिए फिलहाल और भी मैसेज है उनको भी शामिल करते हैं, और ये गाना सुनना चाहती हैं जो कि गाना बहुत ही शानदार है, एकदम मस्त वाला है। ऐ जाते हुए लम्हों, ये गाना सुनना चाहती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये गाना हम आपको सुनवाएंगे

एमएस की बात करूं तो इन्होंने बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना जी लदावली मुरादाबाद से। और ये लिखते हैं, जमीन पूछते हैं गगन पूछते हैं, लहू से लिखाया चमन पूछते हैं, वतन के लिए जान देने वालों को हमारे यानी कि संपूर्ण को हम पूछते हैं, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। क्या बात है। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं खेमपाल सैनी जी यानी कि टेलर हनुमान नगर लाइन पर मुरादाबाद से। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को।

सबरीन मलिक जी कनेक्ट हो गए हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं, आज जाना तेरी मजबूरियों में मैंने नहीं जाना। अरे सर, आज तो थोड़ा अच्छा गाना सुनिए, ये सैड भरा गाना नहीं। नो, गलत बात है जी। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं।

जरा ठहरो। सही में श्रोताओं, देखिए हम अपने देश को यानी कि अपने देश के लिए आज 15 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन उन वीरों को क्या जो हमारे लिए आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्द देखते हैं, ना अपने घर की खुशियाँ देखते हैं, बस वो देखते हैं तो देश के लिए खुशियाँ देखते हैं, और देश के लिए ही मरते हैं, देश के लिए ही जीते हैं, और हम उन्हीं को कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे देश के लिए। उन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में खुली आसमान में सांस लेते हैं और अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं, हर दिन को अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन एक बात और, हम कहते हैं हमारा देश रंगीला, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा देश रंगीला तब होएगा जब हम साफ सफाई रखेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, देखेंगे कूड़े की ढेर, मतलब एक ने रखा वहां पर कूड़ा तो सब रखना शुरू कर देते हैं, और वॉशरूम की जगह देखेंगे कि ऐसी मतलब टॉयलेट करते हैं। फिर ये नहीं कि मतलब यार थोड़ा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा रहे, कहीं वहीं पर बीड़ी खैनी गुटखा थूक देते हैं, तो ये देश रंगीला कहाँ है? देश रंगीला तो तब होएगा जब आप कूड़े को डस्टबिन में डालेंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे, चलते चलते गाड़ियों से रैपर फेंक देते हैं चिप्स कुरकुरे की, तो ऐसा नहीं करिए, तभी हमारा देश असल में रंगीला कहलाएगा। सिर्फ गाने सुनने से देश रंगीला नहीं होता है, हम अपनी अपने यानी कि सोच बदलना पड़ेगा तब हमारा देश रंगीला होता है। तो आज से संकल्प लीजिए कि साफ सफाई रखेंगे, अपने आसपास कूड़ा नहीं फैलने देंगे, और जो कोई डालता भी है तो आप उनको प्यार से समझाओ कि डस्टबिन में कूड़ा डालिए ताकि इससे बीमारियां भी नहीं फैलेंगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध हवाएं मिलेंगी। अदरवाइज जहां पे कूड़े की ढेर लग जाती है, अगर आप उसके आसपास से भी निकलेंगे तो पता है आपको बहुत गंदी स्मेल होती है और ऐसी बीमारियां भी फैलती हैं। और साथ ही साथ जो पशु है उनको, वे बेजुबान है, उनको क्या पता, वो कचरे के ढेर में जाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, ऐसी ऐसी गंदगी चीजें खाते हैं, वो किसी किसकी कमी है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी है। तो हम सबको मिलकर ही सफाई करनी है, तभी देश यानी कि रंगीला कहलाएगा। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है।

रमेश जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और ये कहते हैं गणतंत्र दिवस। अरे सर, अरे भाई, आज गणतंत्र दिवस नहीं है, आज है स्वतंत्र दिवस। मैं आपको बताती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न हो गई है और साथ ही साथ आप मुझे जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी तो अलग ही बात है। तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि आज है स्वतंत्र दिवस, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत को यानी कि अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और वो दिन है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए हम हर साल यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि इस दिन हम आज़ाद हो गए थे। तो नोट डाउन कर लीजिए कि इस दिन हमारा देश है वो आज़ाद हो गया था। भैया प्लीज़ नोट डाउन करिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस किसको बोलते हैं वो भी सुनिए। यानी कि गणतंत्र दिवस, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर आप मेरे शो में कनेक्ट हुए हो तो मैंने आप सभी से क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत का यानी कि संविधान कब लागू हुआ था। तो यानी कि गणतंत्र दिवस बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, आई होप मेरे मानने से आपको समझ में आ गई होगी कि आज गणतंत्र दिवस नहीं है, आज स्वतंत्र दिवस है, क्योंकि आज हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद हो गए थे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आज़ादी जिस तरीके से हमें मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं मिली है, क्योंकि मैं रेडियो पे इतनी बात नहीं कर सकती, मतलब मुझे लगता है कि अभी भी लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं मिली है। मतलब जितने भी रेप केसेस होते हैं, मुझे लगता है कि उनको सज़ा नहीं सुनानी चाहिए, उनको उसी टाइम ही सज़ा दे देनी चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरा अगर इस बारे के में सोच भी रहा ना, किसी के बारे में, किसी की लड़की बारे में गंदी सोच भी आ रही है ना, तो उसे ये देख कर उसकी रूह कांप जाए और वो फिर किसी लड़की को गंदी नज़र से ना देखे। तो बस यही मेरे अपील है कि जो जितने भी रेप करते हैं उनको सज़ा ना सुनाई जाए, साथ के साथ सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि बस दुनिया देखती रह जाए और उसको भी पता चले कि आखिरकार मैंने गलती क्या की थी। ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, सच में देश अच्छे से आज़ाद हो जाएगा। चलिए फिलहाल और भी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, मैसेज करके डिलीट मत कीजिए क्योंकि मैसेज हम शामिल करेंगे। रीना सिस्टर जी, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को शोले फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ जी, जलवा जलवा यानी कि आपने आरजे रीना सिस्टर जी के पावरफुल प्रेजेंटेशन जो आपकी है उसका लाजवाब, यानी कि क्या ही कहे, हार टचिंग यानी कि प्रेजेंटेशन है आपकी और आप को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और अगले मैसेज की बात करूं तो राजा कश्यप जी कनेक्ट हो गए हैं। जन्म यानी कि 2010, अरे सर मेरा नाम रीना है, रीना, ईना, टीना, बीना, यार सर आप सब क्या नाम रख देते हैं मेरा। मेरा नाम REENA रीना है। रीना जी को 15 अगस्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं।

चलिए श्रोताओ, फिलहाल आप गाना सुनिए। अपने तो सच में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, अरे आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्र दिवस। चलिए फिलहाल जिनके घर में आज शादियां होने वाली हैं या फिर शादी होने वाली है या फिर है, उनके लिए उन्होंने गाना यानी कि डेडिकेट किया था, आए हम बराती, ये वाला गाना सुनते हैं फिलहाल।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

जी गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, एंजॉय करिए। और साथ ही साथ आज भैया घरों में पकवान जो बने, सच बताओ स्टूडियो तक खुशबू आ रही है। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारे पास मैसेज आता है, शमशी जी का मैसेज आता है, और हेलो मैम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, आपको भी सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मुरादाबाद से यानी कि रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं, ये वीरों की निशानी है, इसकी हिफाजत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। रीना मैम गाना सुनना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला ना सके। बिल्कुल जी, ये गाना हम आपको सुनवाएंगे, और देखते हैं किनका मैसेज रह गया है। इसी के साथ मैं लूँगी यहाँ से जाने की इजाज़त लेने वाली हूँ।

0: गुड मॉर्निंग दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे जी, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अंकित जी मुरादाबाद से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ये गाना सुनना चाहते जैक पॉट सॉन्ग है। अगले मैसेज की बात करूं तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, यानी कि संभल रोड से हैं, लेकिन अतर सिंह जी कनेक्ट होते हैं। सृष्टि जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। हेलो मैम, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भी एक सॉन्ग सुनवा देना। बिल्कुल जी, सुनवाएंगे हम आपको। बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
1: आए हम बाराती, आए हम
0: पायल हाथ में कंगना हाथ में, गोविंदा जी का गाना है। बिल्कुल जी, ये हम आपको गाना सुनवाएंगे। और श्रोताओं, इसी के साथ मैं लेती हूँ यानी कि यहाँ से जाने की इजाज़त, लेकिन साथ ही साथ और भी जो यानी कि हमारे पास यानी कि एसपी ट्रैफिक से यानी कि सुभाष गंगवाल जी का यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर एक संदेश है, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। क्योंकि देखिए, उनका यानी कि हमारे मुरादाबाद वालों के लिए एक प्यारा सा संदेश।
2: मैं सुभाष गंगवार, एसपी ट्रैफिक मुरादाबाद। एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम लोग असीमा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और मुरादाबाद वासियों को हमारी तरफ से ढेर सी शुभकामनाएं।
3: मैं मुरादाबाद एफएम 89.6 की सभी ऑडियंस को मुरादाबाद पुलिस की तरफ से आई विश वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ये जो इंडिपेंडेंस डे हमारा है, ये देश की स्वतंत्रता पर मनाया जा रहा है, तो हमें भी अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जो भी हैं, उन सबसे स्वतंत्रता पाके एक आपस में भाईचारे के साथ में देश के लिए काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।

0: कनेक्ट करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे सिहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे खुशी, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया, उन्होंने कहा अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे, और सबसे बड़ी बात अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
1: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
1: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
0: क्या सिहतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
1: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
1: यही तो अच्छी खबर है आरजे खुशी जी, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
1: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
1: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
0: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
1: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो
1: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
0: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: यही तो सबसे अहम बात है आरजे खुशी, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: जरा विस्तार से बताइएगा।
1: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग।

0: है बल्कि अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ,
0: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
1: तो चलिए, जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे, ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और

0: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
1: तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

मैं मुरादाबाद FM 89.6 की सभी ऑडियंस को मुरादाबाद पुलिस की तरफ से आई विश वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ये जो इंडिपेंडेंस डे हमारा है, ये देश की स्वतंत्रता पर मनाया जा रहा है, तो हम लोग भी अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं जो भी हैं, उन सबसे स्वतंत्रता पाके एक आपस में भाईचारे के साथ में देश के लिए काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सर।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज स्टूडियो में आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन यकीन मानिए उसकी वजह भी बहुत खास है।
1: अरे भाई, देर से आए हो तो उसकी वजह भी बताइए हमारे श्रोताओं को। कहीं रास्ते में चाय समोसे पर तो नहीं रुक गई आप?
0: अरे नहीं नहीं सेहतिया जी, आज तो मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते देर कर थी। गाँव की चौपाल के पास पहुँची तो देखा की लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा कोई पंचायती होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो आप लोगों से कुछ समझा रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि वहाँ सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी बड़ी भागीदारी से अधिक आपकी बातें सुन रहे थे।
1: अच्छा हरजी रीना जी, तो आपने चोरी छिपे हमारी बातें भी सुन ली?
0: जी बिल्कुल, और जो पहली बात मैंने सुनी उसने तो मुझे यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने कहा था कि अगर परिवार में दो लोग हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी दो लोगों की है। बस फिर क्या, मैंने वही तय कर लिया कि आज का कार्यक्रम भी इसी विषय पर होगा।
1: बहुत ही अच्छा आरजे रीना जी, आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आज का दिन भी इसी चर्चा के लिए बहुत खास है।
0: जी श्रोताओ, आज हम विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सेहतिया जी सच बताइए, जैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस का नाम आता है लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आता है कि आज फिर जनसंख्या कम करने की बात होगी।
1: बिल्कुल आरजेरीना जी, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है आरजेरीना। आज विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब केवल लोगों की संख्या गिनाना नहीं है, इसका मतलब हर व्यक्ति को स्वयं एकदम स्वस्थ जीवन मिले, हर युवा को अपने सपने पूरा करने का अवसर मिले, हर परिवार को अपने भविष्य से जुड़े जो फैसले हैं वो समझदारी से ले सके।
0: यानी अब बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, सोचिए अगर किसी परिवार में माँ स्वस्थ नहीं है, बच्ची को सही पोषण नहीं मिल रहा है, युवाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और लोग बिना जानकारी के फैसला लिए जा रहे हैं, तो केवल जनसंख्या की संख्या देखकर क्या फायदा होगा? असली विकास तो तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, शिक्षित हों और अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सकें।
0: और शायद यही वजह है कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का विषय युवाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर देता है।
1: बिल्कुल सही, आज की दुनिया यह कह रही है कि युवाओं को केवल भविष्य मत कहिए बल्कि उन्हें आज ही एक नया अवसर दीजिए। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, सही जानकारी और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, यही किसी देश की युवा और बड़ी ताकत से कम नहीं होगा।
0: लेकिन सेहतिया जी, लोग तो कहते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी बात लोगों की क्षमता है?
1: आरजेरीना, आबादी अपने आप में समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब लोगों को अवसर नहीं मिलते। अगर युवा स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: यानी हमें लोगों की गिनती से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात, और इसी सोच के साथ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी कई वर्षों से चला आ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने वर्ष 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था।
0: लेकिन लोग आज भी परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ दो बच्चे या जनसंख्या नियंत्रण समझते हैं,
1: जबकि इसका असली उद्देश्य कुछ और है। परिवार नियोजन का मतलब है कि पति पत्नी मिलकर यह तय करें कि उन्हें बच्चा कब चाहिए, कितने बच्चे चाहिए और दोनों बच्चों के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए। इससे माँ की सेहत बेहतर रहती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और पूरा परिवार बेहतर जीवन जी पाता है।
0: यानी परिवार नियोजन किसी मजबूरी का नाम नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला है।
1: बिल्कुल सही कहा आरजेरीना, और सबसे जरूरी बात यह है कि यह फैसला दोनों मिलकर लें। आज भी कई जगहों पर लोग सोचते हैं कि गर्भधारण, प्रसव और परिवार नियोजन केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार तो दोनों का है ना, इसीलिए जिम्मेदारी भी तो दोनों की होनी चाहिए।
0: सच कहूँ तो हमारे समाज में अक्सर पुरुष इन बातों से दूरी बना लेते हैं। अस्पताल जाना हो, गर्भावस्था की जाँच हो, आयरन की गोली हो या परिवार नियोजन की बात, अक्सर कहा जाता है कि ये महिलाओं का मामला है।
1: और यही सोच तो बदलनी है आरजे रीना, जो कि सबसे जरूरी है। एक जिम्मेदार केवल कमाने व्यक्ति नहीं होता, वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर गर्भावस्था की जांच के लिए भी जाता है। वो यह भी देखता है कि पत्नी समय पर पौष्टिक भोजन खा रही है या नहीं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां ले रही है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचने की तैयारी भी पहले से करते हैं।
0: यानी एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत पति पत्नी दोनों की साझेदारी से होती है।
1: बिल्कुल, और यह साझेदारी केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं रहती। बच्चों के जन्म के बाद टीकाकरण करवाना, माँ को आराम मिलने देना, स्तनपान में सहयोग करना, बच्चे की देखभाल करना और आगे परिवार नियोजन पर मिलकर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है आरजे रीना।
0: लेकिन सेहतिया जी, कई बार पुरुष कहते हैं कि परिवार नियोजन तो महिलाओं के लिए होता है, इसमें हमें इससे क्या लेना देना।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आरजे रीना। परिवार नियोजन महिलाओं का ही नहीं पूरे परिवार का विषय है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं तभी माँ स्वस्थ रहती है, बच्चा स्वस्थ रहता है और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
0: आपने आर्थिक मजबूती की बात कही, इसका परिवार नियोजन से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है आरजे रीना। सोचिए, अगर परिवार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की योजना बनाते हैं तो हर बच्चे की पढ़ाई, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है। परिवार की आय का सही उपयोग होता है और भविष्य की योजना बनाने में भी आसान हो जाता है।
0: यानी बात केवल बच्चों की संख्या की बल्कि उन्हें बेहतर अवसर देने की भी है।
1: बिल्कुल सही, और यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी है। हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है परिवार के फैसले जानकारी के आधार पर लिए जाएं, ना कि अफवाहों या सामाजिक दबाव के आधार पर।
0: बिल्कुल सही कहा सेहतिया जी, आपने जानकारी की बात कही, लेकिन आज भी कई लोग परिवार नियोजन के साधनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं।
1: बिल्कुल सही, और शायद यही वजह है कि हम खुलकर इन विषयों पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है।
0: तो फिर आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि परिवार नियोजन के कौन कौन से सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है, कौन सा साधन किसके लिए उपयुक्त तो हो सकता है, पुरुषों की भूमिका क्या है, युवाओं के लिए सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है, और आखिर स्वस्थ परिवार का रिश्ता स्वस्थ समाज से कैसे जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब जानकारी सही होती है तो फैसले भी सही होते हैं, और सही फैसले ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत देश की नींव बनते हैं।
0: सेहतिया जी, आपने अभी कहा सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन आज भी गांव में कई लोग कहते हैं कि भगवान जितने बच्चे दे उतने अच्छे, ऐसे में परिवार नियोजन की बात करना क्या सही है?
1: देखिए आरजे रीना, बच्चे भगवान का आशीर्वाद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति भी दी है। अगर परिवार अपनी परिस्थितियों, माँ की सेहत और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले तो ये भी उतनी ही समझदारी की बात है। परिवार नियोजन का मतलब बच्चों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर जीवन देना है।
0: यानी परिवार का आकार नहीं, परिवार का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, और इसी वजह से सरकार भी हमेशा कहती आई है कि परिवार नियोजन का उद्देश्य संख्या कम करना नहीं, बल्कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। जबकि जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश का भविष्य भी मजबूत होगा।
0: लेकिन आज भी कई महिलाएं कहती हैं कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती, फिर भी कोई गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं कर पाती, ऐसा क्यों?
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। कई बार जानकारी की कमी होती है, कई बार डर होता है, तो कई बार परिवार या समाज का दबाव। कुछ महिलाओं को संसाधनों की जानकारी नहीं होती, कुछ को लगता है कि इससे नुकसान होगा, और कई बार पति की सहमति ना होने के कारण भी वे कई साधन नहीं अपना पाती हैं। इसीलिए केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है।
0: यानी अगर पति पत्नी दोनों खुलकर बात करें तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे रीना, परिवार में बातचीत बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं तभी परिवार नियोजन सफल होता है।
0: सेहतिया जी, आपने पहले बच्चों के बीच अंतर रखने की बात भी कही थी, आखिर यह इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि माँ का शरीर भी आराम चाहता है। अगर एक बच्चे के तुरंत बाद दूसरा बच्चा हो जाएगा तो माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगी और माँ को स्वस्थ होने में समय नहीं मिल पाएगा। इससे माँ में खून की कमी, कमजोरी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। वहीं अगले बच्चे के कम वजन के साथ साथ जन्म लेने वाले या समय से पहले जन्म लेने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें और दो बच्चों के बीच लगभग 3 साल का अंतर रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है।
0: यानी यह केवल परिवार की सुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी सवाल है।
1: बिल्कुल, और यह बात जितनी महिलाओं को समझनी चाहिए उतनी ही पुरुषों को भी।
0: लेकिन सेहतिया जी, जब परिवार नियोजन की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से सुरक्षित साधन उपलब्ध है।
1: ये सवाल बिल्कुल सही है आरजे रीना। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ समय बाद बच्चा चाहता है तो कहीं कई वर्षों तक नहीं चाहता, और किसी का परिवार पूरा हो चुका होता है तो इसीलिए सभी की अलग अलग विकल्प है, उपलब्ध है सभी के लिए।
0: तो शुरुआत उन दंपतियों से करते हैं जो कुछ समय बाद बच्चा चाहते हैं।
1: ऐसे दंपतियों के लिए कई सुरक्षित विकल्प हैं, जैसे कॉन्डोम, जो गर्भधारण रोकने के साथ साथ कई यौन संक्रमण से भी आपको सुरक्षा देता है। नियमित गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं। सरकार माला एन जैसी गोलियां भी उपलब्ध कराती है। छाया नाम की एक गैर हार्मोनल गोली भी उपलब्ध है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है।
0: और जो इंजेक्शन वाला साधन है उसके बारे में भी लोग पूछते हैं।
1: जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है और यह एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इससे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की सलाह और समय के अनुसार ही लेना चाहिए।
0: कई लोग कॉपर टी का नाम भी सुनते हैं, ये क्या होता है?
1: आरजे रीना, कॉपर टी यानी IUCD भी एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है। इससे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी लगाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे रोज याद रखने की जरूरत नहीं होती है। कई वर्षों तक यह गर्भधारण से सुरक्षा देता है और जब दंपत्ति दोबारा बच्चा चाहती है तो इसे निकलवाया भी जा सकता है।
0: लेकिन गाँव में कॉपर टी को लेकर बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि यह शरीर में इधर उधर घूम जाती है, कोई कहता है कि इससे हमेशा के लिए बच्चा नहीं होता।
1: देखिए आरजी रीना, ऐसी ही कुछ अफवाहें हैं जो लोगों को सही फैसला लेने से रोकती है। सच ये है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सही तरीके से लगाए गए IUCD सुरक्षित होता है। अगर किसी को कोई परेशानी महसूस हो तो वह स्वास्थ्य केंद्र जाकर सलाह ले सकता है। इसके लिए अफवाहों पर नहीं, डॉक्टर, ANM और आशा की सलाह पर भरोसा करना चाहिए।
0: अच्छा, अगर किसी दंपत्ति का परिवार पूरा हो चुका हो तो उसके लिए क्या विकल्प है?
1: तभी स्थानीय साधनों पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं के लिए नसबंदी की सुविधा है, पुरुषों के लिए भी नसबंदी सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है जिसे नो स्कल्प वेक्सटोमी या NSB भी कहा जाता है।
0: लेकिन पुरुष नसबंदी को लेकर सबसे ज्यादा डरते हैं।
1: बिल्कुल, और यह डर ज्यादातर गलत धारणाओं पर आधारित होता है आरजे रीना। कई लोग सोचते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाएगा, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जबकि यह बिल्कुल गलत है। नो स्केल्पल वैसेक्टोमी एक सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे पुरुष की ताकत, मर्दानगी या रोजमर्रा के काम पर कोई असर नहीं पड़ता।
0: यानी पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल, परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं है। अगर पुरुष आगे आएंगे तो महिलाएं भी, अनावश्यक बोझ उन पर भी कम होगा और परिवार के निर्णय अधिक समानता के साथ लिया जा सकेगा।
0: और अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो बिना योजना के असुरक्षित संबंध,
1: ऐसी स्थिति में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग नियमित गर्भ निरोधक साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सही सलाह के लिए स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना सबसे अच्छा रहता है।
0: सेहतिया जी, सरकार इन सब सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है?
1: आरजे रीना, सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं। मिशन परिवार विकास माध्यम से उन्होंने इन राज्यों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया है। और भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां प्रजनन दर अधिक रही है लोगों को अधिक विकल्प मिल रहे हैं। इसके लिए अंतरा और छाया जैसे नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। संस्थागत प्रसव के बाद परिवार नियोजन की सलाह देने की व्यवस्था मजबूत की गई है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जानकारी देती है, कॉन्डोम और गोलियां उपलब्ध कराती है और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से भी जोड़ती है।
0: यानी अब केवल अस्पताल जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता बल्कि सेवा समुदाय तक पहुँच रही है।
1: बिल्कुल, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर तय दिनों में परिवार नियोजन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि लोगों को सुविधा के लिए बार बार चक्कर ना लगाने पड़े।
0: लेकिन सेहतिया जी, आपने शुरुआत में युवाओं की बात भी की थी, अगर सही जानकारी युवावस्था में ही मिल जाए तो शायद आगे चलकर बहुत सी समस्याएं रोकी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजीरीना, आपने बिल्कुल सही बात कही है और यही हमें अगली चर्चा में समझना है कि किशोर और युवाओं को इतना महत्वपूर्ण है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है और कैसे सही जानकारी उनके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है।
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सेहतिया जी, एक बात बताइए, अगर कोई दंपति परिवार नियोजन अपनाना चाहता है तो उनके पास विकल्प क्या क्या है? कई लोगों को लगता है कि बस नसबंदी ही एक रास्ता है।
1: आरजी रीना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज सरकार परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित और वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध करा रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहता, कोई दो बच्चे के बाद परिवार पूरा मानता है तो कोई अभी केवल अंतर रखना चाहता है, इसीलिए विकल्प भी अलग अलग हैं।
0: यानी एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं आरजी रीना, अगर पति पत्नी अभी बच्चा नहीं चाहते हैं लेकिन भविष्य में चाहते हैं तो उनके लिए स्पिंग्स मेथड्स यानी जन्म के बीच अंतर रखने वाला साधन उपलब्ध है।
0: जैसे
1: सबसे पहला कॉन्डोम। यह बहुत ही आसान और सुरक्षित है और बिना किसी दुष्प्रभाव वाला तरीका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये न केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि यौन संचारित संक्रमण यानी STI और HIV से भी सुरक्षित कर देता है। इसीलिए विशेष रूप से ये युवाओं और नवविवाहित दाम्पत्यों के लिए एक अच्छा विकल्प है।
0: और अगर कोई महिला रोज गोली खाना भूल जाए?
1: तब चिंता की कोई बात ही नहीं है आरजी रीना, सरकार माला एन नाम की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराती है। इसके अलावा छाया नाम की गोलियां भी उपलब्ध हैं, जिससे हर दिन बल्कि निर्धारित अंतराल पर लिया जा सकता है।
0: और कई बार लोग कॉपर टीका भी नाम लेते हैं।
1: बिल्कुल, जिसे हमने IUCD या कॉपर टी कहते हैं, सरकार की ओर से CUIUCD 380A और CUIUCD 375 उपलब्ध है। इसे प्रशिक्षित ANM या डॉक्टर लगाते हैं। एक बार लगाने के बाद यह कई वर्षों तक सुरक्षित गर्भ निरोधक देता है और जब महिला चाहे इसे निकलवा कर फिर से गर्भ धारण कर सकती है।
0: और इंजेक्शन वाला तरीका भी है ना?
1: जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। इसमें हर 3 महीने पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन महिलाओं के लिए रोज गोली लेना मुश्किल हो उनके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।
0: और अगर किसी कारणवश असुरक्षित संबंध बन जाए?
1: तब आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें नियमित गर्भ निरोधक रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह केवल आपात स्थिति के लिए है।
0: और जिसका परिवार पूरा हो चुका है?
1: तब स्थायी उपाय भी उपलब्ध है महिलाओं के लिए, मैनी लैब और लेप्रोस्कोपी नसबंदी, और पुरुषों के लिए नो स्किल्पल वेक्सोटोमी जैसे NSV कहा जाता है।
0: लेकिन हमारे यहाँ तो पुरुष नसबंदी से लोग बहुत डरते हैं।
1: डरना जानकारी की कमी पैदा होता है। सच्चाई यह है कि नो स्किल्पल वेक्सटामी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, जल्द ही रिकवरी होती है और इससे पुरुषों की ताकत कम करने की क्षमता या वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मकता प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल शुक्राणु का स्तर बंद करता है।
0: यानी जो बातें लोग सुनते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाता है, वह गलत है?
1: बिल्कुल गलत है, यह केवल अफवाहें हैं। इसीलिए सरकार लगातार पुरुषों की भागीदारी बढ़ने पर जोर दे रही है।
0: सेहतिया जी, सरकार परिवार नियोजन के लिए और क्या क्या कर रही है?
1: सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, उनमें सबसे प्रमुख है मिशन परिवार विकास।
0: यह क्या है?
1: जिन राज्यों और जिलों में प्रजनन दरें ज्यादा हैं, वहां परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य है हर दंपति तक उनकी पसंद के अनुसार सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन पहुँचाए।
0: यानी केवल साधन उपलब्ध कराना ही नहीं,
1: बिल्कुल इसके साथ साथ लोगों को सही जानकारी देना, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक सेवाएं पहुंचाना, प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन की सलाह देना, स्वास्थ्य संस्थानों में निश्चित दिनों पर परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये सभी इस अभियान का हिस्सा है।
0: और पुरुषों की भागीदारी,
1: वो भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों की साझेदारी और जिम्मेदारी है।
0: लेकिन बात केवल शादीशुदा लोगों की ही नहीं, आज तो युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, भारत में लगभग 25 करोड़ से अधिक किशोर और किशोरियां हैं। यही देश का भविष्य है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
0: सरकार इसके लिए क्या कर रही है?
1: इसके लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RKSK चलाया जा रहा है।
0: इसमें क्या होता है?
1: इसमें किशोरों को केवल प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी ही नहीं दी जाती बल्कि पोषण, एनीमिया, मासिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव, हिंसा की रोकथाम, मानसिक धर्म, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सही निर्णय लेने जैसी कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती हैं।
0: यानी यह केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की तैयारी है।
1: बिल्कुल सही, इसके लिए एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स यानी किशोरी हितेशी स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाए गए हैं, जहां लड़के और लड़कियां बिना झिझक के सलाह और सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं।
0: और स्कूलों में भी कुछ कार्यक्रम चलते हैं ना?
1: जी हाँ, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं।
0: इसमें क्या खास बात है?
1: हर स्कूल में एक पुरुष और एक महिला शिक्षक को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है। वो बच्चों के साथ मित्र रूप से स्वस्थ पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छता और किशोर स्वस्थ जैसे रूप पर चर्चा करते हैं ताकि बच्चा शुरू से ही सही जानकारी के साथ बड़ा हो।
0: सिहतिया जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस का वैश्विक संदेश भी युवाओं को सशक्त बनाने का है।
1: बिल्कुल, इस वर्ष का संदेश यही कहता है कि यदि युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी मिलेगी तभी समाज और देश का संतुलित विकास संभव होगा।
0: यानी लोगों को यह नहीं बताना है कि कितने बच्चे हो बल्कि यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी इच्छा से हमारी जानकारी के आधार पर सही समय पर निर्णय ले सके।
1: बिल्कुल, यही प्रजनन का अधिकार है। हर व्यक्ति का यही अधिकार है कि वह कब शादी करे, कब माता पिता बने, कितने बच्चे हों और उनके बीच कितना अंतर हो, लेकिन यह निर्णय सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ होना चाहिए।
0: सिहतिया जी, आज की बातचीत से मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। विश्व जनसंख्या दिवस केवल आबादी गिनने का दिन नहीं है।
1: बिल्कुल, यह जिम्मेदारी, समानता और अवसर की बात करता है।
0: यह महिलाओं के सम्मान की बात करता है।
1: यह पुरुषों की भागीदारी की बात भी करता है।
0: यह किशोरों के भविष्य की बात भी करता है।
1: यह स्वस्थ परिवारों की बात करता है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बताता है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत घर से होती है, जहां पति पत्नी मिलकर फैसले लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बच्चों को बेहतर भविष्य देने की तैयारी करते हैं।
1: बिल्कुल, जब पुरुष जिम्मेदारी निभाते हैं, महिलाएं सशक्त होती हैं, किशोर सही जानकारी पाते हैं और परिवार मिलकर निर्णय लेता है, तभी समाज आगे बढ़ता है।
0: तो श्रोताओं, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए एक संकल्प लेते हैं, हम परिवार नियोजन से जुड़े मिथकों पर नहीं सही जानकारी पर विश्वास करेंगे। महिलाओं के साथ पुरुष भी बराबरी से स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे, किशोरों को सही जानकारी देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत की पहचान है।
1: यदि आपको परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों या किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से अवश्य संपर्क करें। सभी सेवाएं गोपनीयता और सम्मान के साथ उपलब्ध कराई जाती।
0: इसी संदेश के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए अनुमति। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आरजे रीना जी। सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा, जनसंख्या का सवाल केवल संख्या नहीं बल्कि हर व्यक्ति के बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य का सवाल है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है आरजे रीना।
0: नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ गई के अगले अंक में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने और अपना परिवार का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मैं सुभाष गंगवार, एसपी ट्रैफिक मुरादाबाद। एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम लोग असीमा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और मुरादाबाद वासियों को हमारी तरफ से ढेर सी शुभकामनाएं।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
4: मेरा गांव मेरी धरोहर। पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।
3: मेरी

0: वीरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: स्वागत अभिनंदन नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, एक नई शुरुआत और एक नया सफर। जी हाँ श्रोताओं, एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ इसी प्रोग्राम में, जहाँ पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारियां भी देते हैं। आज के जमाने की सोच बदलना बहुत जरूरी है श्रोताओं। वेल, आज सोच बदलो में हमारा टॉपिक क्या होगा, आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए, अगर इस विषय पर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो ये चीजें आपका फ्यूचर बदल सकती हैं श्रोताओं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है, नौकरियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है एक छोटा सा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं लोग, और अगर जाने जाने में आप इसका शिकार हुए हैं तो कैसे आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, इस ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायत आप कहां दर्ज कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारियां आज आपको मिलेंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। छोटा सा मतलब छोटा सा। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे पुनः मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका नाम है सोच बदलो प्रोग्राम, जो आप सुनते हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन यानी कि अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं जरा सी देर में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

से। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सोच बदलो में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। इवन एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कल की बात बताता हूँ। कल ही एक मुरादाबाद के एक लड़के का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो है मैसेज किया। उसने लिखा, वर्क फ्रॉम होम है, आप डेली 2000 रुपए कमा सकते हो। सोचिए मुरादाबाद में भी ये चीज लोग कर रहे हैं।

0: कंपनियों की पॉलिसी होती है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की जानकारियां आपके पास सुबह से शाम तक आपके फोन पर आती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जॉब इस फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो देखिए ये तो फिर बड़ी बेवकूफी हम कह सकते हैं हो जाएगी, है ना, आपके साथ हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना श्रोताओं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऑनलाइन वाले लोग आपको कॉल करते हैं ना, जॉब को ऑफर देते हैं, आप जाने अनजाने में आके पे भी कर देते हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे देते हो कि शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए जॉब की तो हर किसी को जरूरत है, हर दूसरे व्यक्ति को काम की जरूरत है, और एक सही काम अगर उसे मिल जाए, उसके सपनों का काम मिल जाए, तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है उसके लिए श्रोताओं। तो बस मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप इमोशनली होकर, आप ज्यादा ख्याली फुलाव ना पकाकर पहले उसकी डिटेल्स निकालें, उसके बारे में चेकआउट करें, इंटरनेट पर सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई शुल्क या कोई ऑनलाइन फीस आप जमा कराएं। अदरवाइज कोई भी पैसा अपनी मेहनत की कमाई का इधर उधर आप वेस्ट ना करें। इसी श्रृंखला में एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है हमारी, उनको भी हम जोड़ेंगे, उनके साथ भी एक वाक्य रहा है ऑनलाइन फ्रॉड जॉब का, उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, एक छोटा सा अंतराल का समय हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस मैं यूं गया और यूं आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: एक बार फिर से इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, सोच आप बदलोगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच बदलती है ना तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। और आज की जिंदगी को, आज की ये जो जनरेशन है, जो जेंजी है, उसका सोच का बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना इतनी इंडिपेंडेंसी हमने बना ली है, हम हर चीज ऑनलाइन ही चाहते हैं, चाहे हमारा खान पान हो, हमारी शॉपिंग हो, हमारा मतलब चाहे जॉब का हो, कुछ भी व्हाटएवर, हर चीज में हमें लगता है कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के चक्कर में ना जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉडबाजी करने वाले, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मौके का फायदा मिल जाता है। वो ये मौके का फायदा उठा के आप ही का बेवकूफ बना देते हैं, और कई बारी आप बेवकूफ बन जाते हैं, आपने इवन हम सब इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, इसी बीच मैंने कहा था मैं आपको एक नई आवाज से रूबरू कराने वाला हूं, तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये वाक्या हुआ था, आइए जरा सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, और वो कैसे फिर इससे बाहर निकल पाए, जरा जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या नाम है आपका?
4: नमस्कार, मैं कुमकुम बोल रही हूँ मुरादाबाद से, मैं काशीराम की रहने वाली हूँ।
0: जी कुमकुम, आप मुझे बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होते होते बची, शायद आप भी शिकार होने वाली थी इस चीज, तो कैसे मतलब बताएं थोड़ा।
4: जी, जब ये स्टडी पूरी हुई तो मैं भी ऑनलाइन जॉब्स देख रही थी कि हाँ घर बैठे मैं भी कुछ कर सकूं, और हर बच्चा चाहता ही है कि कुछ कर सके।
0: बिल्कुल,
4: तो इसलिए हम जॉब देख रहे थे ऑनलाइन, मैं और मेरे घर सभी बच्चे, तो सडनली एक कॉल आता है, एक कॉल आता है जैसे कि आप कहते हैं
0: के लिए, आप बोल रहे हो
4: जी ऑनलाइन जॉब के लिए, के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। उसमें इंटरव्यूज वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें, उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर रहेगी, और आपका टाइमिंग खाली दिन में रहेगा 2 से 3 आवर्स। तो मैं इसको सोच के बहुत एक्साइटेड थी, पूरा दिन बहुत एक्साइटेड रही, पर नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू पहले 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे,
0: मतलब आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
4: हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको 5,000 रुपीज देने होंगे, जिसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि 30,000 मिलेंगे तो 5,000 में क्या चला जाएगा,
0: क्या चला जाएगा, हर आदमी सोचता है चलो ठीक है जॉब तो मिल जाएगी।
4: हाँ, जॉब भी मिल जाएगी, कम टाइमिंग
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो उस हिसाब से ही मैं ये सोच रही थी कि अच्छा

0: होगा, ये बहुत रहेगा। निखिल मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तेरी भाभी के पास भी कॉल आई थी ऐसे।
1: ओके।
0: पहले उन्होंने 5,000 लिए, उसके बाद 10,000 लिए।
1: अरे बाप रे। अच्छा।
0: उसके बाद जाके पता चला कि ये फेक कॉल्स हैं, इस तरह से नहीं होता ऑनलाइन। उनकी पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि इंटरनेट में ये क्या चीज है, क्या नहीं है।
1: तो आपके साथ मतलब ये फ्रॉड होते होते बच गया।
0: मैंने
1: पेमेंट दे देती, अगर आपके भाई आपको नहीं बताते तो आप भी फंस जाती।
0: यस सर।
1: जी, तो श्रोताओं यही हमारा भी उद्देश्य है आपको बताने का, समझाने का। देखिए कुमकुम तो बच गई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन फ्रॉड जॉब से बचें, स्कैमर से बचें और अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके जो आसपास की चीजें ना वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज ये है बॉस, सोच बदलना सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, सोच बदलना इसलिए भी जरूरी है। जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बुलंद होगी तो आप ना बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे और स्मार्टली काम कर पाएंगे। श्रोताओं आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से कैसे बचे। कुमकुम ने अपनी स्टोरी शेयर करी, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। वहां पर आप हमें डीएम करके बता सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप कैसे बाहर निकले हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का समय है, छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, एक और बहुत ही मधुर मधुर गीत आपने सुना और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हां, इसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जो है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाला एक छोटा सा प्रोग्राम और इसी में हम शामिल करेंगे, मतलब एक छोटी सी जानकारी से भरा ये इन्फॉर्मेटिव वाला छोटा सा सेशन, जरा इसको सुनते हैं, ये भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि हम स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद सबसे पहले तलाश करते हैं नौकरी, और जब हम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो शायद कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो होती है जॉब से रिलेटेड फ्रॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। आज का विषय है फर्जी नौकरी का ऑफर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी, नौकरी की तलाश और ठगों का जाल। चलिए आखिर वो कैसे जाल बिछाते हैं आपको बताते हैं। श्रोताओं, आज के समय में युवा नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र मौके ढूंढ रहे हैं, कई लोग बेहतर नौकरी की चाह में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी नौकरी के ऑफर देते हैं। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राहुल, मुझे ईमेल आया है, बिना इंटरव्यू के वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं और सैलरी 40,000 रूपए।
2: अरे, इतनी जल्दी नौकरी, कुछ पूछताछ की?
1: कंपनी बड़ी लग रही है, बस 2,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं। लो फीस भर दी, ना तो कॉल आ रहा है ना ईमेल का जवाब, वेबसाइट भी नहीं खुल रही। राहुल समझ कि वह फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो चुकी है। फर्जी नौकरी का ऑफर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्जी नौकरी के ऑफर में ठग खुद को एचआर या रिक्रूटर बताते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, ज्यादा सैलरी और आसान काम का लालच देते हैं, फिर वे मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट की कॉपी, और बाद में गायब हो जाते हैं। फर्जी नौकरी के लाल संकेत, अगर नौकरी के ऑफर में ये बातें हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। बिना इंटरव्यू नौकरी, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत कम काम, नौकरी से पहले पैसे मांगना, अनजान ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जल्दी ज्वाइन करने का दबाव। याद रखिए, असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती हैं। सुरक्षित नौकरी खोजने के चलिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय केवल भरोसेमंद जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें, कंपनी की वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, रिक्रूटर की जानकारी वेरीफाई करें, किसी अनजान लिंक या दस्तावेज अपलोड ना करें, आधार, पैन, बैंक डिटेल साझा करने से बचें। छात्र और माता पिता के लिए मैं खास संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, फर्जी नौकरी के ऑफर के शिकार अक्सर छात्र, नए ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा होते हैं, इसलिए माता पिता बच्चों से बात करें, हर ऑफर को सच ना माने, शक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो, अगर आप फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो जाएं, तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए संपर्क करें www.staysafeonline.com पर। सुरक्षित रहने के 5 नियम, नौकरी के लिए पैसे मत दीजिए, बिना इंटरव्यू और पर भरोसा ना करें, दस्तावेज सोच समझकर साझा करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें, जानकारी ही सुरक्षा है। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी पाना मेहनत से होता है, लेकिन एक गलत भरोसा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सपने देखिए, लेकिन आंखें खुली रखिए, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन और साथ में देता है काम की बात।

तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी सुनी हमारे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, ये आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारियों के लिए बस आप ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हाँ श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। आज हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन महत्वपूर्ण जानकारियों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा होगा। ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जानकारियों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा होगा। ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकती है। अगर अगली बार आपको कोई कॉल आए कि आपको 30,000 रुपए देंगे, लेकिन उससे पहले आपको

2000 का रजिस्ट्रेशन कराना है तो संभल जाइएगा और समझ जाइएगा, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नौकरी जरूर मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर गलत रास्ते से बच जाओगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच बदलिए, हर चीज ऑनलाइन नहीं, कुछ चीजें ऑफलाइन भी करनी है। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, अलविदा, फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, कुछ और म्यूजिकल गीत के बाद आपको कुछ और नए प्रोग्राम भी सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर FM मुरादाबाद 89.6 परिवार की ओर से सभी मुरादाबाद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
2: मेरा गांव मेरी धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर,
1: मेरी।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही
1: का, तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे हो, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत

0: लाते हैं उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है तो, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
1: सुना सकती है, बिल्कुल
0: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
1: ओह, अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
0: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
1: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
0: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये भारत में, कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है। इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
1: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
0: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो होता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटिशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है तो उसके अगेंस्ट में विशेष तौर पे इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, उसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट

0: आदेश को रद्द भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने।
1: एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
2: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
4: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
2: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
5: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
6: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: केरलम में मुख्यमंत्री VD सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्र ध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
7: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री VD सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, NCC, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं लेकर शो यानी कि महिला मंच, जहां हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। और मैं हूं आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी, हम दोनों साथ में ही आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महिला मंच शो में महिलाओं में बढ़ता वजन और खान पान। ये वजन अचानक नहीं बढ़ता, वजन तो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आईने के सामने खड़े होकर आपने खुद को कहा है, अरे यार वजन इतना कैसे बढ़ गया, कपड़े पहले जैसे फिट नहीं आते, सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले से ज्यादा थकान, और फिर सबसे पहला फैसला बस अब खाना कम करना है। हर कोई यही सोचता है अपने मन में कि बस खाना कम कर दो तो हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बहनों जरा रुकिए, क्या वजन बढ़ने की वजह सिर्फ खाना है? क्योंकि एक महिला के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होता है। उम्र बढ़ती है, हार्मोन बदलते हैं, शादी के बाद रूटीन बदलता है, प्रेगनेंसी आती है, बच्चों की जिम्मेदारी आती है, काम का स्ट्रेस आता है, और इन सब के बीच हम अक्सर अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वजन कम करो, आज हम समझेंगे कि वजन बढ़ने से पहले हमारा शरीर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है, क्या सच में कम खाना ही वजन घटने का रास्ता है? सो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो खुशी तुम क्यों बैठी हो, बोलो तुम भी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और सभी को ये कंफ्यूजन रहता है एवरीवन कि खाना कम खाएं या खाना सही खाएं। बहनों तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि वजन बढ़ना और हमने क्या किया, रोटी कम, चावल बंद, मिठाई बंद, और कभी कभी तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, हमारा शरीर कोई मोबाइल नहीं है कि बैटरी कम हुई तो बस स्विच ऑफ कर दिया। शरीर को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो भी हर दिन। अक्सर हम सोचते हैं जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा, लेकिन असल बात ये है कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है। एक महिला सुबह से रात तक घर संभालती है, नौकरी करती है, बच्चों को देखती है, ऐसे में शरीर को सही न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो आज से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ एवरीवन, कि अपने प्लीज से पूछिए, क्या मेरा पेट सिर्फ भरा हुआ है या मेरे शरीर को पोषण भी मिल रहा है? और यहीं से हमारी अगली बात शुरू होती है, क्योंकि कई बार समस्याएं खाने की मात्रा में नहीं होती, समस्याएं हमारी प्लेट में छिपी होती है। तो दोस्तों अब हम अपने प्लेट को थोड़ा गौर से देखेंगे और शायद आपको अपनी रोज की एक ऐसी गलती दिखाई दी जाए जिस पर आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो।
1: आपकी प्लेट क्या कहती है, बात इस टॉपिक पर करेंगे। आज रात का खाना खाते समय अपने प्लेट को जरा ध्यान से देखिएगा। रोटी या चावल तो है, लेकिन सब्जी कितनी है, दाल या कोई प्रोटीन वाली चीज है, सलाद है, और तेल कितना है। हम अक्सर कहते हैं मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अगर प्लेट में पोषण का बैलेंस नहीं है तो सिर्फ कम खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। एक और बात, खाना खाते समय मोबाइल चलाना, टीवी देखना या जल्दी जल्दी खाना, इससे भी हमें ये समझ मुश्किल हो जाती है कि हम कब पर्याप्त मात्रा खा चुके हैं। तो अगली बार खाना खाते समय थोड़ा रुकिएगा, धीरे धीरे खाइए, खाना चबा कर खाइए और अपनी प्लेट को देखिए। क्योंकि हेल्दी ईटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, हेल्दी ईटिंग का मतलब है अपने शरीर को समझ कर खाना। लेकिन अब सवाल ये है कि खाना तो हम दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन बीच में जो छोटी छोटी चीजें खाते हैं उनका क्या, एक बिस्किट, एक नमकीन, एक कप चाय, यहीं से असली कहानी शुरू होती है।
2: और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, चाय के साथ 2 बिस्किट को क्या आप पूरा खाना मानती हैं? शायद नहीं, शाम की थोड़ी सी नमकीन, अरे बस थोड़ी सी तो थी। किसी के घर गई तो मिठाई का एक टुकड़ा एक ही तो खाया, लेकिन यही थोड़ी थोड़ी अगर रोज होता रहे तो हमारी ईटिंग हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको मिठाई या चाय हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना है। अगली बार जब बिना भूख के कुछ खाने का मन करे ना, तो खुद से पूछिए, मुझे सच में भूख लगी है या बस आदत है। और हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी हमें भूख नहीं होती फिर भी खाने का बहुत मन करता है, क्यों? क्या इसका कनेक्शन हमारे स्ट्रेस और मोशन से भी हो सकता है? इसका जवाब अगले लिंक में आपको रीना जी देने वाली है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी आपको मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: खाने पीने के बात हो और मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ आपने गाना भी इतना जबरदस्त वाला सुना ना श्रोताओं। सो चलिए बात करते हैं, भूख पेट की है या मन की? कभी बहुत तनाव हुआ और अचानक मीठा खाने का मन किया हो, कभी किसी बात से परेशान होकर लगा हो चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, इसे हम इमोशनल ईटिंग कह सकते हैं। यानी कई बार हम पेट की भूख से ज्यादा अपने इमोशंस की वजह से कुछ खाने लगते हैं। और महिलाओं की जिंदगी में स्ट्रेस की कमी तो नहीं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, नौकरी, परिवार, रिश्ते, कई बार महिला सबको संभालते संभालते खुद को अंदर का तनाव दबा लेती है और फिर बिना सोचे कुछ खा लेना आसान लगता है। तो अगली बार जब अचानक खाने की बहुत इच्छा हो सिर्फ 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे भूख लगी है या मुझे आराम चाहिए? शायद जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रेस की बात निकलती है तो एक और चीज याद आती है, नींद, जो कि नींद बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि कई महिलाएं तनाव तो झेलती है लेकिन आराम वो सबसे आखिरी में करती हैं। और नींद का हमारी ईटिंग हैबिट से क्या रिश्ता है इसके बारे में भी जानेंगे।
1: देखिए, नींद बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और घर में सबके सोने का समय तय है, बच्चों का, पति का, ऑफिस का, लेकिन आपका नहीं। कई महिलाएं रात को सबसे आखिरी में सोती हैं और सुबह सबसे पहले उठती हैं और फिर दिन भर थकान रहती है। जब नींद पूरी नहीं होती हमारी एनर्जी, मूड और खाने की आदतों पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए हेल्थ का मतलब सिर्फ डाइट नहीं, खाना सही, मूवमेंट सही और नींद भी सही। आज रात एक काम कीजिएगा, सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर को आराम देने का मौका दे रही हूँ? क्योंकि शरीर दिन भर आपका साथ देता है, उसे रात में आराम देना भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहनों, महिलाओं की जिंदगी में ना एक और चीज है जो धीरे धीरे शरीर को बदलती है, उम्र के साथ आने वाले हार्मोनल चेंजेस, और कई महिलाएं इसे सिर्फ वजन बढ़ गया समझकर छोड़ देती हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हार्मोनल का भी यही खेल है। महिला का शरीर बहुत खास है और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर इसमें बदलाव आते रहते हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, और इनमें स्टेजेस में हार्मोनल चेंज होते हैं और इनके साथ वेट, स्लिप और बॉडी शेप में बदलाव भी महसूस हो सकते हैं। इसीलिए हर बार वजन बढ़ने पर खुद को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बदलाव को सिर्फ हार्मोन्स कहकर छोड़ देते हैं। अगर वजन तेजी से बढ़ रहा हो, पीरियड्स में बदलाव है या कोई और परेशानी लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है, क्योंकि अपने शरीर को समझना कमजोर नहीं समझदारी है। और अब बात उस समय की जब बहुत सी महिलाएं कहती हैं, पहले तो मैं कितना भी खा लेती थी वजन नहीं बढ़ता था, अब थोड़ा खाती हूँ वजन बढ़ जाता है। आखिर उम्र के साथ ऐसा क्यों महसूस होता है?
1: उम्र के साथ बदलती जरूरतें, जो हमारी फीमेल से समय हमें सुनी है वो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी ही बातें हो रही हैं इसमें। आपने अपनी माँ या किसी बड़ी बहन को ये कहते जरूर सुना होगा, हमारे जमाने में तो इतना खाती थी फिर भी मोटी नहीं होती थी। ऐसा महसूस होना कई महिलाओं में देखा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी एक्टिविटी कम हो सकती है, शरीर की एनर्जी नीड्स बदल सकती हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो जो रूटीन 20 इयर्स की उम्र में ठीक था, जरूरी नहीं कि वो 40 या 50 में वही रहे। इसलिए उम्र के दोष देने के बजाय अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक खास पड़ाव है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद का समय, क्योंकि माँ बनने के बाद शरीर से लेकर रूटीन तक सब कुछ बदल जाता है और उसी समय महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है दूसरों की सलाह की नहीं बल्कि सही जानकारी और सही केयर की।
0: माँ बनना जिंदगी का खूबसूरत पड़ाव है, लेकिन प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवरी के लिए समय चाहिए। कई बार महिला बच्चे में इतना व्यस्त हो जाती है कि अपना खाना, आराम और हेल्थ पीछे छोड़ जाती हैं। और फिर कुछ समय बाद जब वजन कम नहीं होता तो वह खुद को दोष देने लगती हैं। अपने शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए। सोशल मीडिया पर किसी और पोस्टम बॉडी देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। हर महिला का शरीर अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है और हर रिकवरी में भी अलग है। इस समय जरूरत है बैलेंस न्यूट्रिशन, पर्याप्त आराम और अपनी स्थिति के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी की। और अगर आप इमोशनल है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद की बात से हमें एक और सवाल मिलता है, क्या घर की महिला सच में खुद की थाली पर ध्यान देती है?
1: और हमारी महिलाओं की ना एक बात बड़ी कहते हैं कि उनको ना शुरू से सिखाया जाता है कि आप सबका ख्याल रखो और जब आप सबका ख्याल रखेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे। और इसी चक्कर में वो क्या करती हैं, सबको खाना खिला देती हैं और सबसे लेट खुद खाना खाती हैं। सुबह सबसे पहले बच्चों का नाश्ता, फिर पति का लंच, फिर घर का काम, और जब खुद खाने की बारी आती है तो खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। फिर वो अभी कब दोपहर में बन जाता है पता ही नहीं चलता। कई महिलाएं पूरे घर का न्यूट्रिशन देखती हैं लेकिन अपनी प्लेट पर ध्यान नहीं देती। बच्चों को दूध चाहिए, पति को हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन खुद के लिए कभी बचा हुआ खाना, कभी जल्दी जल्दी खाना और कभी खाना स्किप कर देना। याद रखिए, अपने लिए खाना बनाना और समय पर खाना सेल्फिश होना नहीं होता है। अगर आप घर की जिम्मेदारी है लेकिन आप खुद भी एक इंसान है, आपका शरीर भी केयर डिजर्व करता है। अब बात करेंगे उस चीज की जिसे हम अक्सर बस पेट निकल आया कहकर हंसकर टाल देते हैं, लेकिन क्या पेट की बढ़ती चर्बी को इतना हल्के में लेना चाहिए?
0: मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना?
1: Exactly.
0: क्योंकि हमारा अगर मोटापे की शुरुआत की बात करूँ तो पेट से ही शुरू होता है। कभी कपड़े पहनते हुए आपने कहा है बस पेट

0: अतिरिक्त चर्बी को सिर्फ सुंदरता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ वजन मशीन पर नंबर मत देखिए, अपनी वेस्ट एक्टिविटी, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर वजन लगातार बढ़ रहा है या आपको कोई दूसरी परेशानी भी महसूस हो रही है तो मेडिकल एडवाइस जरूर लें। लेकिन वजन की बात करते करते हम एक्सरसाइज को कैसे भूल सकते हैं? अब महिलाएं कहेंगी हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम ही कहाँ है। तो देखिए, टाइम आपको खुद निकालना पड़ता है। टाइम कभी आपसे ये नहीं कहता कि मैं 6 बज गया हूँ, उठ जाओ एक्सरसाइज करो। वो खुद आपके लिए और आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा।
1: जिम नहीं तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही फिट रह सकते हैं, आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज शब्द सुनते ही ना कई महिलाओं के दिमाग में जिम और भारी वर्कआउट आ जाता है और फिर मन कहता है मेरे पास तो इतना टाइम कहाँ है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, दिन में पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, लगातार घंटों बैठे रहने से बचना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्टिव रहना भी मूवमेंट का हिस्सा है। जरूरी है ये कि आपकी एक्टिविटी आपकी उम्र और आपकी हेल्थ के हिसाब से हो। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बात, एक्सरसाइज को सजा मत समझिए, आप अपने शरीर को पुश करने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए मूव कर रही हैं। लेकिन अब आते हैं उन डाइट्स पर जो इंटरनेट पर देखकर हर महिलाएं सोचती हैं शायद यही मेरे लिए भी काम कर जाए, क्या हर वायरल डाइट हमारे लिए सही होती है? इसका जवाब हम सुनने वाले हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब आप भी जानने के लिए तैयार है ना? क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया तो हर कोई चलाता है ना और उस पर अच्छी अच्छी रील्स सबको देखनी पसंद होती है और कुछ भी हेल्दी डाइट आती है तो हमें लगता है हाँ यार ये तो मैं भी बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। लेकिन दोस्तों पता है जरूरी नहीं है कि वो डाइट अगर उस पर काम करी तो वो हम पर भी काम करेगी। हर किसी की बॉडी अलग होती है एंड इसीलिए एवरीवन, जरूरी नहीं है कि जो मैं खाऊं वो मेरे आपके लिए भी अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको ना शूट करे। तो आगे हम जानेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर आपसे बात करते हैं।

0: क्या बात है जी, शानदार गाने बाद अर्जुनी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। और जैसे कि खुशी ने बताया ही है कि इंटरनेट वाली डाइट, अक्सर इंटरनेट वाली डाइट हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होती है, क्योंकि खुशी ने बता दिया है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और जरूरी नहीं है कि जो आप खा रहे हो दूसरे को भी वही सूट हो, दूसरा एक्सरसाइज वो कर रहा है तो वही के लिए भी बेनिफिट हो और आप भी वैसा ही एक्सरसाइज करने लग जाओ। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो वायरल पे नहीं जाना चाहिए, आपको सोच समझ कर करना। आजकल फोन देखते ही डाइट की दुनिया सामने आ जाती है, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, कोई कहता है इतने घंटे खाना बंद करो। लेकिन जरा सोचिए, जिस महिला के लिए वो डाइट बनी है, क्या आपका शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है? हर महिला की उम्र, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और हेल्थ नीड अलग हो सकती है, इसीलिए किसी की डाइट देखकर उसे कॉपी करना हमेशा सही नहीं है। खासकर प्रेगनेंसी, ब्रेकफास्टिंग या किसी मेडिकल कंडीशन में बिना एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह ले। देखी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करे। वजन कम करना तो शॉर्टकट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है, ऐसी आदत बनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वजन कम करने के लिए हम अपनी पसंद की सारी चीजें छोड़ पाएंगे? उसके बारे में सोचना और कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी होता है कि आपकी जो बहुत अच्छी फेवरेट डिश होती है उसको हमें छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप अपनी रूटीन को, अपने आप को हेल्दी से मतलब ठीक करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ता है,
1: कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यार। हेल्दी रहने का मतलब जिंदगी से स्वाद निकाल देना नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है कि आप कभी मिठाई नहीं खाऊंगी, कभी अपनी पसंद की चीज नहीं खाऊंगी, तो शायद कुछ दिन बाद वही चीजें और ज्यादा याद आएंगी। बेटर ऑप्शन ये है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस करें, घर का खाना ज्यादा खाएं, प्रोटीन पर ध्यान दें, रोज की छोटी छोटी अनहेल्दी आदतों को पहचानें और अपनी पसंद की चीजों को समझदारी से लें। और सबसे जरूरी, एक दिन कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो ये मत सोचिए कि अब तो सब खराब हो गया। एक मील आपकी पूरी जर्नी तय नहीं कर सकता, अगला मील बेहतर हो सकता है। और अब बात उस चीज की है जिसे हम अक्सर वजन से भी ज्यादा गंभीरता से ले नहीं लेते, खुद को लेकर हमारी सोच।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, हमारी सोच पर डिपेंड होता है हर चीज। आईना आपका दुश्मन नहीं है। अक्सर हम जब भी आईने के आगे खड़े होते हैं ना, तो खुद से ये कहते हैं यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, और अपने आईना को ही दुश्मन समझ लेते हैं और उसे देखना ही बंद करते हैं। फिर तो छोटे छोटे मिरर में ही देखकर अपना मेकअप कर लेते हैं ना। कभी आईने में देखकर खुद को कहा है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ? अगर कहा है तो आज खुद से थोड़ा प्यार से बात करके देखिए। आपका शरीर सिर्फ आपकी बॉडी शेप नहीं है, इसी शरीर ने आपको कितने साल संभाला है, काम किया है, परिवार संभाला है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी झेली है, बीमारियों से लड़ा है, थककर भी आपको आगे बढ़ा है। तो बदलाव करना है तो जरूर करिए, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं। हेल्थ का मतलब सिर्फ पतला दिखना नहीं है, हेल्थ का मतलब होता है खुद को बेहतर महसूस कराना, एक्टिव रहना और अपने शरीर का ध्यान रखना। और अब सवाल ये है, अगर आज से शुरुआत करनी है तो क्या करें? क्या एक साथ 10 चीजें बदलनी होगी?
1: नहीं नहीं बाबा, 10 चीजें क्यों बदलूंगी, आप एक ही बदलाव काफी है। आज से अपनी जिंदगी में 10 नियम मत बनाइए, बस एक चीज सुनिए। शायद सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना, शायद जो रोज थोड़ा सा चलना, शायद चाय बिस्किट की आदत कम करनी है। जब एक आदत दिख जाएगी तब दूसरी आदत जोड़िएगा, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। और अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है या साथ में दूसरे सिम्टम्स भी हैं, तो खुद से डाइट एक्सपेरिमेंट करने की बजाय डॉक्टर से बात करना बेहतर है। लेकिन एक बात और एक चीज है जिसे महिलाएं अक्सर भूल जाती हैं, पानी। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्या आप सच में पूरे दिन पर्याप्त पानी पीती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, अक्सर हम इसको ही भूल जाते हैं।
1: लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ।
0: मैं भी नहीं भूलती हूँ यार। मैं भी पी लेती हूँ पानी,
1: एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं।
0: हाँ, मैं देखती हूँ ये बोतल दोबारा भरने गई है, मैं भी फटाफट खाली करती हूँ, दोबारा भर के लेकर आती हूँ। तो मतलब पानी देखिए, एक टाइम के लिए आप खाना, जहाँ आपको दो रोटी भूख है एक रोटी खाइए, लेकिन पानी दो बोतल पीजिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और फेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर जितना पानी पियेंगे फेस पर ग्लो भी उतना ही ज्यादा आएगा। सुबह से शाम तक हम कितने काम कर लेते हैं लेकिन पानी पीना याद नहीं रहता। एक बार फोन देख लिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, काम में लग गए और पूरा दिन निकल गया, यही रहता है। अपने शरीर की बेसिक जरूरतों को इग्नोर करना हमारी आदत बन जाती है। पानी की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है और मौसम, एक्टिविटी और हेल्थ के हिसाब से भी बदलती है, इसीलिए अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन में फ्लूइड इनटेक को लेकर डॉक्टर ने कोई अलग सलाह दी है तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का असली सवाल पानी से भी बड़ा है, हम अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनते कितनी बार हैं? क्योंकि शरीर बार बार संकेत देता है, बस हम अक्सर उन्हें कल देंगे कहकर टाल देते हैं और यही हमारे लिए गलत हैबिट बन जाता है।
1: शरीर की सुनिए, थकान है फिर भी काम, नींद आ रही है फिर भी मोबाइल, भूख लग रही है फिर भी पहले सबको खाना, स्ट्रेस है फिर भी चुप, और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं मेरा शरीर इतना बदल क्यों गया है। शरीर अचानक नहीं बदलता, हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए आज से अपने शरीर को सुनना शुरू कीजिए। अगर कोई परेशानी लगातार बनी हुई है उसे इग्नोर मत कीजिए, जरूरत पड़े तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए समय निकालना लग्जरी नहीं है, लेकिन क्या हम सच में अपने लिए रोज थोड़ा समय निकाल सकते हैं?
0: बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर अपने हैबिट को खुद को चेंज करें तब।
1: खुद को इम्प्रूव करना है हमें तो हम हर चीज कर सकते हैं रीना।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ श्रोताओं, आज का चैलेंज बहुत आसान है। अगर घर में किसी एक मील के समय सिर्फ अपनी खाने पर ध्यान दीजिए, मोबाइल एक तरफ रखिए, जल्दी जल्दी मत खाइए, खाना को हमेशा चबाल कर खाना चाहिए, अपनी प्लेट को देखिए और खुद से पूछिए मैं अपने शरीर को क्या दे रही हूँ। फिर रात को सोचिए आज मैंने अपने लिए क्या किया, शायद आपने थोड़ा वॉक किया हो, शायद समय पर खाना खाया हो, शायद पानी ज्यादा पिया हो, या शायद पहली बार खुद को आराम दिया हो। यही छोटी चीजें हमें अपने शरीर से जोड़ती हैं। और अब इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, ऐसी बात जो मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने दिल में रखे और अपने आप से वादा करे। तो खुशी बताइए जरा।
1: तो एवरीवन, आप भी हमारे लिए जरूरी हैं और हमारी हेल्थ भी। आज हमने सिर्फ वजन की बात नहीं की, पता है आपको, हमने बात की है अपनी प्लेट की, अपनी नींद की, स्ट्रेस की, हार्मोन्स की, प्रेगनेंसी के बाद शरीर की, उम्र के साथ होने वाले बदलाव की, और सबसे जरूरी अपने लिए समय निकालने की। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो खुद को दोष मत दीजिए, पहले समझिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, अपनी आदत को देखिए, छोटे बदलाव कीजिए और जरूरत हो तो डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लीजिए। क्योंकि बहनों, वजन आपका पूरा परिचय नहीं है, आप सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, एक पत्नी हैं, कामकाजी महिला हैं, और इन सबसे पहले आप खुद भी एक इंसान हैं जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो आज घर जाते हुए खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा, मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए ऐसे ही हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं फरमाइश शो में, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आपके ये फरमाइश वाला शो है भैया, वो शुरू

0: ये नहीं कि उसको कूड़े कचरे में नहीं फेंकना है आपने, उसको हमेशा अपने छत पर ऐसे लहराते देना है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ जो फर्स्ट कॉलर कनेक्ट हुए हैं नाम है। हेलो
1: हेलो फरमाई जी,
0: जी,
1: मैं आशीष बात कर रहा हूँ सिडनी से। मेरा
0: हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: नाम आशीष सिडनी से बोल रहा
0: ओके जी, बताइए सर, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हूँ। मैं सुना दो साला बटन वाला गाना जो है, वो दिल दिया है जान
0: दिल
1: की
0: दिया है
1: दरनिया बटन
0: जान।
1: सेड़नी है।
0: ओके ओके सर, तो किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: कैसे नाम तो मेरे आपके स्टूडियो कैसे हैं लोग?
0: सर हमारे स्टूडियो में सब बहुत बढ़िया है, बिंदास है जी,
1: सही है, बढ़िया। हाँ,
0: अच्छे रहने चाहिए सर।
1: और बारिश हो रही है आपका?
0: नहीं नहीं सर, धूप निकल रही है, ऐसी धूप निकल रही है कि बाहर कोई जाए तो वो सूख जाएगा। आज
1: कल तो हो रही बारिश, कल
0: बारिश
1: बताएं
0: नहीं
1: बारिश
0: है,
1: के।
0: कल तो बारिश थी लेकिन संडे को बताया ना, आज बारिश नहीं है। शाम को अगर थोड़ा बहुत
1: हाँ,
0: हो सकता है तो कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज अभी बारिश नहीं है जी। तो चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है।
0: ओके जी, तो चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं, यानी कि दिल दिया है जान भी देंगे, और आज हरियाली तीज भी है तो तैयारियां भी चल रही होगी आप सभी की। तो चलिए पहले ये गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9823789698 96 पर आपने कॉल करना है, और आपको ये पता है कि गाना वही जो आप सुनना चाहें।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। कर्मा मूवी से आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 3:00 यानी कि 21 मिनट हो चुके हैं। आप फरमाइशों में कनेक्ट है आरजे रीना के साथ और गुड वाली आफ्टरनून है जी 15 अगस्त की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: मैम जिला मुरादाबाद ग्राम देवीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: अच्छा है मैम, बढ़िया है मैम। 15 दिन में आज आपसे बात हो रही है, 15 दिन से मैंने फोन ही नहीं किया आपके पास वाले थे मैम।
0: चलिए जी, पक्का सर?
1: हाँ पक्का, जो रेडियो में कभी हो गई थी, खराबी हो गई थी, अब थोड़ी खराबी है, माल टूट गई।
0: ओके ओके ओके जी, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम जी बता देंगे, कुछ बात कर लो। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आपको, सभी आकाशवाणी को, सभी श्रोताओं को मैम।
0: जी बिल्कुल, उसकी तो बनती है शुभकामनाएं, हमारा देश
1: हाँ
0: आजाद।
1: मैम, कल मैम मौसम अच्छा था, आज फिर गर्मी हो गई, और परसों और पंद्रह दिन तो अल्लाह के पना बड़ी भारी गर्मी थी।
0: जी ये तो है, गर्मी तो अब कल भी देखिए मौसम कैसा रहेगा, लेकिन आज भी गर्मी के साथ साथ हवाएं तो चली रही है ना।
1: हाँ थोड़ी हवा चल रही है, राहत है, फिर भी थोड़ी ठंड में बैठ के आराम पड़ गया है।
0: अच्छा, आप तो वैसे छत पर बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
1: हाँ मैं छत पर सुनता हूँ कि नीचे जो है ना मैम नेटवर्क नहीं आते, जो एंटीना होता है रेडियो का वो ये नहीं पकड़ता, छत पर क्लियर बोलता है मैं।
0: अच्छा, तो अभी आप धूप में या छाव में?
1: छाव है ऊपर, कोठरी बनी हुई है लिंटर से ऊपर, उसकी छाव में हूँ मैं। पश्चिम से ठंड हो जाती है, 2-3 खासों में ठंड हो गई है मैम।
0: ओके ओके ओके
1: हाँ चारपाई रहती है ऊपर, 12 महीने 3-4 साल चारपाई रहती है, सोते हैं ना हम छत के ऊपर।
0: ओके ओके जी, तो बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं बहुत ही प्यारा देशभक्ति गीत है, और देशभक्ति गीत मतलब होना भी चाहिए आज का दिन जो है, खास तौर से जो है हमारे जो मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद किया, फिरंगियों को यहाँ से भगाया, उनके जो है सिलसिले में आज जो है 15 अगस्त का दिन मनाया जा रहा है मैम। तो
0: देश आजाद हुआ था
1: दिलजीत
0: सर
1: जी,
0: हमारा।
1: हाँ जी जी देश आजाद हुआ था, दिलजीत जी की आवाज में है नासिक फिल्म का गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज ना बदला चंदा ना बदला ले रे ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। जी
0: सदाबहार गाने,
1: बहुत ही प्यारा गीत है मैम, पुराना
0: चलिए जी आज
1: गीत
0: हम
1: है मैम,
0: सुनते हैं बहुत
1: दिलजीत
0: ही
1: जी
0: प्यारा गीत।
1: और सभी सुनने वालों के साथ में मैम।
0: चलिए जी, सभी सुनने वालों के साथ में आपको हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर? तो श्रोताओं गाना सुनते हैं और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896। लेकिन आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि जिन्होंने भी इस वीक कॉल किया है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो प्लीज़ इस वीक आप कॉल मत करिएगा। उन नए लिसनर को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने इस वीक कॉल नहीं किया है। तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है, अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता, और समय की बात करूं तो 3:29 हो चुके हैं और फरमाइश हो में आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्टेड श्रोता, और आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896, और आप हरियाली तीज के गाने सुन सकते हैं, 15 अगस्त है, 15 अगस्त के गाने सुन सकते हैं। तो अब हम जिनका कॉल आया था वो एकदम कट हो गया है, तो फिलहाल उनकी रिक्वेस्ट पर एक गाना थी वो प्ले करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम आप सभी के साथ श्रोताओं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आरजूरी ने आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई। श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 3:35 हो चुके हैं, फरमाइश शो में आप आरजूरी ने के साथ कनेक्ट हैं। यानी कि आज 15 अगस्त, और आज सिर्फ झंडा फहराने, मिठाई खाने का दिन नहीं है, बल्कि आज उन वीरों को भी याद करने का दिन है, उन शहीदों को भी याद करने का दिन है जिनके वजह से हमें आज़ादी मिली। और आज हम आज़ाद हैं, और इसी उपलक्ष्य में आज 15 अगस्त मना रहे हैं हम सभी। और आज यानी कि तीज का त्यौहार भी है, यानी कि 15 अगस्त और हरियाली, जब ये मिलता है, यानी कि हमारे तिरंगे में 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, यानी कि केसरिया के साथ हरियाली भी और सफ़ेद। ये सभी शांति का प्रतीक है। और बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन से गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो, हेलो,
1: हेलो फरमाए।
0: हाँ जी सर, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैम, हम तो ठीक हैं, आप सुनाओ, बढ़िया हो?
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा प्रिंस।
0: प्रिंस, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ, ग्राम गोमतपुर, जिला मुरादाबाद।
0: जी, बताइए क्या काम करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: सर, आपकी रेडियो की बैकग्राउंड ज़्यादा आ रही है, उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या बो रखा है सर आपने इस टाइम खेत में?
1: इस टाइम तो धान है।
0: अच्छा, ओनली धान है सर।
1: हाँ,
0: ओके, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: धर्मेंद्र फिल्म बस अरिजीत गाना सुना दो, तू अगर मेरी जमाना से है। नहीं,
0: सर, आपने इतनी जल्दी गाना चेंज कर दिया?
1: यही वाला सही लगता है, अरिजीत सिंह की आवाज।
0: अभी तो आपने बोला था जीता था जिसके लिए, अब अरिजीत सिंह आ गए।
1: हाँ, यही सुना दो अरिजीत सिंह का,
0: कौन सा गाना?
1: तू अगर मेरी जमाना तेरा, ऐसी कुछ बोला उसके।
0: देखिए सर, आपको पूरी गाने भी याद नहीं है। चलिए हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है? ठीक
1: ठीक,
0: है जी, तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। नंबर है 9837896899।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम गुड वाली आफ्टरनून है जी, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करें श्रोताओं, तो 3:46 हो चुके हैं। आज जरीना के साथ आप कनेक्ट है फरमाइश शो में, और एक क्योंकि आज 15 अगस्त है और कल है 16 अगस्त, लेकिन आप सभी को अगर याद नहीं है, अगर आपने नहीं कराया है, तो कल के बाद आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। यानी कि आपने करवाना था, यानी कि आप एलपीजी का गैस है, आपके पास इंडियन गैस है, तो आपने क्या करवाना था, EKYC। अगर आपने EKYC नहीं कराया है तो सिलेंडर आप बुक करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, साथ ही साथ जो सब्सिडी मिलती है उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। और जिन्होंने करवा ली है भैया, उनके तो बल्ले बल्ले ही हैं और जिन्होंने नहीं कराया, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ने वाला है आपके ऊपर। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है सर? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओके हेलो जी सर, बताइए कौन से गाने सुनना चाहते हैं?
6: ये देश के वीर जवानों का, अलवे लोग का मस्ताना।
5: इस देश का है ना वीरों, क्या कहना है? किसी का नाम लेना चाहेंगे?
6: हाँ, हमारी लड़की रिया।
5: ओके चलिए जी, इन्हीं के साथ आपको गाने
6: सुनाना चाहते हैं।
5: क्या कह रहे हैं जी, सुनाइए।
6: अब तो ख्वाहिश है कि ये जख्म भी खा के देखें।
5: ओके।
6: अब तो ख्वाहिश है कि ये जख्म खा के भी देखें, लम्हा भी सही उसको खा के देखें।
5: क्या बात,
6: आंधियों से जो उलझने की कसक रखते हैं, आंधियों से जो उलझने की कसक रखते हैं, एक दिया तेज हवा में भी जलाते।
5: वाह क्या बात है, क्या दर्द भरा शायरी है। ठीक है जी, ठीक है, तो चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का वीरों, ओए होए। चलिए भाई गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे आप सभी के बीच और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें।

0: बहुत ही शानदार अपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना सुना है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का वीरों क्या कहना। हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 3:55 हो चुके हैं, और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं
1: जी? अच्छा हूँ, मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी सितारे जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं जनरल फिजिशियन हूँ।
0: ओके ओके जी, ओके बताइए फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: उत्तराखंड की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी।
0: जी आपको भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए, आज अपने अपने घर पर झंडा फहराया है?
1: जी झंडा फहराया है, बच्चों को मिठाइयां बांटा है, उसको प्रेरित किया है।
0: ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो।
1: माँ तुझे सलाम का सुनाइएगा।
0: अच्छा, माँ तुझे सलाम, चलिए सर हम यही गाना आपको सुनवाते हैं, माँ तुझे सलाम।
1: दो मित्र हैं मेरे।
0: क्या कह रहे हैं?
1: दो मित्र हैं, मित्र।
0: अच्छा मित्र है आपके, बताइए कौन है आपके मित्र?
1: रणबीर भाई है दिल्ली से, शारदा बाबू है,
0: ओके
1: गजराज लोधी है।
0: जी बस हो गया, दो ही नाम लेने थे।
1: जी जी जी,
0: चलिए सुनो। हाँ ओके, तो चलिए गाना सुनते हैं, यानी कि माँ तुझे सलाम। उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं, और अब बने रहिए आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

गांव मेरी धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए। यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ और समय की बात करो श्रोताओं तो 4:06 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। तो अपने पास अभी 1 घंटा है, आराम से आप कॉल करिए और साथ ही साथ आप अपना फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और देखिए, आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, और आपको भी पता है कि संडे को यानी कि हमारा फरमाइश शो नहीं आता है, इसीलिए आज ही आपने कॉल करना है। लेकिन जिन्होंने कॉल इस वीक कर लिया है, कृपया करके वो कॉल ना करें, औरों को मौका दें, नए लिसनर कनेक्ट होंगे, उनके भी फरमाइश के गाने सुनिए, बहुत अच्छे होते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है सो गई हैं मैडम जी। हेलो, अरे भैया, नेटवर्क मतलब सच में, जब भी ये नेटवर्क ना बीच में आ जाता है, ये चाहता है कि बस हम कनेक्ट होने ही नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। भाई ये नेटवर्क ऐसे चला जाता है, पूछो मत। चलिए फिलहाल अगले कॉलर के कॉल आ चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार बहन जी, प्रमोद नाम है। मैं
0: जी नमस्कार, बताइए कहाँ से हैं आप?
1: बोल रहा हूँ डिजाइन एक्सपोर्ट।
0: जी बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: मैं गाना सुनूंगा, तुमसे बना मेरा जीवन।
0: तुमसे बना मेरा जीवन,
1: वो है क्या
0: किसी का नाम लेना
1: नाम
0: चाहेंगे?
1: है, बस अपने श्रोता सारा नाम।
0: ओके जी, चलिए सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? जी नमस्कार, चलिए गाना सुनते हैं, तुमसे बना मेरा जीवन, मोहम्मद अजीज जी की आवाज में, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में।

0: जी गर्ड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ फरमाइश शो में, और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, तुम मुझसे जुदा ना होना। और अर्जेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 4:12 हो चुके हैं, और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरंज समस्या।
0: ओके, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: ओके जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बॉर्डर का सुना देना,
0: बॉर्डर मूवी का, याद आती है
1: जी।
0: जी किसी का नाम लेना चाहे? मौसम तो मुरादाबाद में सर सही है, धूप भी है, हवाएं भी हैं, चिपचिपी वाली गर्मी भी है। हमारे तरफ भी कल बारिश हो जाएगी सर अच्छी खासी। आप भेज दीजिए बारिश।
1: जी हम भेज देंगे,
0: पर आज मत भेजिएगा सर, फंक्शन बहुत से खराब हो जाएंगे, आज तीज के फंक्शन है आज।
1: जी आपसे पहली बार बात हो रही है क्या?
0: अच्छा, मुझसे पहली बार बात हो रही है।

0: क्या बात है श्रोताओं, बॉर्डर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। कुमार सानू, उदित नारायण, विनोद राठौर की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। याद आती है, याद आती है। सही में उन जो वीर है ना, उनसे पूछ के देखिए, जो आज भी हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, कि उनको घर की याद आती है या नहीं आती है। वो कहेंगे हमें घर की याद आती है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए हमारा देश है। उनके मुंह से सिर्फ यही आप सुनेंगे, और वो यही कहते हैं कि आप सब खुश रहे, हम आप सभी की रक्षा के लिए है। और मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 4:21 हो चुके हैं श्रोताओ, फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, यानी कि गाना वही जो आप सुनना चाहे, और इसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है। 9823789689 हमारा नंबर है, जो कि आप सभी को, मतलब आपके जुबान पे ये नंबर, मतलब जो ये नंबर है आप सभी को याद है, और आप सभी के फ़ोन में फीड भी है। तो देखिए आप कॉल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, नंबर है 9837896896। मतलब जो रेडियो का नंबर है बहुत ही आसान है, यानी कि आपको बस 4 डिजिट याद करने होते हैं, 9837, उसके बाद 896896, बस इतना सिंपल सा नंबर है। कॉल कर आप अपना गाना सुन सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाई, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: सानू बोल रहा हूँ, मुरादाबाद।
0: सानू
1: जी,
0: जी बताइए सानू जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आपकी याद आ रही थी, लगा थी कॉल।
0: अच्छा,
1: बात करके रीना जी से, आपसे काफी दिनों के बाद किए हुए।
0: चलो, याद ताजी हो गई अब आपकी। जी बताइए। हाँ जी,
1: आप कैसी हैं?
0: बहुत बढ़िया है सर, आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं?
1: बस ठीक चल रहा है, आप सुनाइए।
0: चलो अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए जी। बताइए क्या करते हैं वैसे आप?
1: चलो ना मेरा।
0: ओके जी, तो कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: कोई भी सुना दीजिए जो आपको पसंद हो, हरियाणवी ट्रैक।
0: अच्छा, हरियाणवी ट्रैक सुनेंगे, ठीक है। आपको जी अपनी पसंद का ही सुनवाएंगे, अब बेफिक्र रहिए आप। तो चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: मैम एक दोस्त के लिए एक लाइन
0: जी बोलिए।
1: जहर भी हैं और शहद भी हैं, हम जहर भी हैं और शहद भी हैं, स्वाद आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। इज्जत दोगे तो नवाजे जाएंगे, गुरूर दिखाओगे तो भुला दिए जाएंगे।
0: हाँ, इज्जत दोगे तो शहद मिल जाएगा, इज्जत नहीं दोगे तो जहर मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपका शायराना अंदाज था, और इसी के साथ हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके जी, वेलकम। तो चलिए श्रोताओ गाना सुनते हैं, यानी कि जयपुर की चुंदरी, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा तभी मजा आएगा आपको।
2: चुंदरी जयपुर तक मंगवाए रहे

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप फरमाई शो में कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 4:28 हो चुके हैं। और बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और अभी आपने यानी कि हरियाणवी ट्रैक सुना, तो देखिए श्रोताओ, यानी कि एक 15 अगस्त के गाने और ऊपर से हरियाणवी, भाई मजा आ जाता है सच बताओ तो। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं। हेलो
1: गुड इवनिंग मैम। बस
0: जी, गुड इवनिंग, बताइए कैसे हैं आप।
1: ये तो मैम आपके स्टाफ में आप कैसी हैं मैम?
0: बहुत बढ़िया है हमारे स्टाफ में भी
1: जी मैम, 15 अगस्त की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद
0: जी।
1: सर,
0: आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। अपना
1: आप स्वस्थ
0: परिचय
1: रहें,
0: दीजिए,
1: मस्त रहें।
0: कहाँ से
1: जी
0: हैं आप।
1: मेरा नाम पिंटू मुरादाबाद लेनपाल से बात करता हूँ मैम।
0: अच्छा जी, बताइए क्या करते हैं आप पिंटू जी।
1: कि मैं छोटा मोटा काम करता हूँ अपना।
0: अच्छा, छोटा मोटा काम करते हैं आप।
1: जी जी
0: चलो बहुत अच्छी बात है, छोटा मोटा कामों पर काम तो करना चाहिए।
1: जी मैम, जब तक इंसान संसार में रहे उसको काम करना चाहिए और खूब अच्छे तरीके से करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छे से काम करना चाहिए। तो बताइए आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं।
1: मैम बोरा पिक्चर का गाना है कि हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई है।
0: ओके okay.
1: जी मैम, मैं शायरी यद करना चाहता हूँ,
0: हाँ हाँ हाँ
1: आपकी
0: बिल्कुल,
1: इजाजत हो तो।
0: श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी मैम, इस तरीके से है कि आईना क्यों ना दूं के तमाशा कहे जिसे, आईना क्यों ना दूं के तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसे कहे जिसे, गाली बुरा ना माने जो वाइस बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे।
0: जी बहुत अच्छा आपका शायरी है। और चलिए हम आपको गाना सुनवाते हैं और ऐसे ही
1: थैंक यू
0: शायरी।
1: वेरी मच। जी
0: हाँ जी,
1: मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: ओके वेलकम। चलिए हम आपको गाना सुनवाते हैं, ठीक है। तो चलिए श्रोताओं, बॉर्डर मूवी से गाना सुनते हैं, यानी कि मोहब्बत हो गई है।

0: इस इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति के जज्बे को बनाइए और भी खास।
1: हिंद न्यूज 9
0: FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मूवी शो। आइए साथ मिलकर मनाएं आजादी का जश्न देशभक्ति और मनोरंजन के साथ। पावर्ड बाय ब्रजलाल कृष्णलाल ज्वेलर्स, सपोर्टिंग बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्या हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन,
1: BMR हॉस्पिटल,
0: डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एवं क्रस्ट हॉस्पिटल। इस इंडिपेंडेंस डे जुड़िए इस खास पहल से और महसूस कीजिए देशभक्ति का जुनून। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय
1: हिंद न्यूज 9
0: एंड FM मुरादाबाद 89.6।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 4:37 हो चुके हैं और आप फरमाइश शो में कनेक्ट हैं। और देखिए, आपने बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है, बॉर्डर 2 मूवी से मोहब्बत हो गई है। यानी कि भाई, ये मूवी मैं अभी तक देखने नहीं गई हूँ, लेकिन जब मैंने ट्रेलर ही देखा था मुझे बहुत ही झकास लगा था। बाकी जो देखने गए थे हमारे ऑफिस से बड़े बड़े लोग यही बैठे, उनकी आवाज पहचान ली होगी आपने तो कहना है कि रिव्यू अच्छा था इनका। तो मैं तो फिलहाल घर पे देखने वाली हूँ। और चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, क्या नाम है, क्या कर रहे हो?
2: मेरा नाम सोनू कुमार, 10 बुद्धिहार से बोल रहा हूँ।
1: जी, बुद्धि बिहार से बोल रही हैं आप
2: कैसी हो मैम?
1: सर मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ, चंगी हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ, झकास हूँ।
2: सर हम भी अच्छे हैं, प्रोग्राम सुन रहे थे, कॉल लगाएं, मैम से बात करें।
1: हंसी आ रही है सर आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो रही है।
1: अच्छा, मेरे से बात हो रही है, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर बताइए सर, आज क्या किया आपने पूरे दिन?
2: हम तो आज घर पे पूरे दिन।
1: तो आपने झंडा नहीं फहराया छत पर?
2: झंडा लगा दिया मैम हमने सुबह।
1: चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो।

0: बताइए और क्या पकवान बनाया आपने इतने अच्छे मौके,
1: हाँ
0: क्या पकवान बनाया आज आपने?
1: आज हमने मैम अभी तो अब बनने आया खाना।
0: अच्छा, अब यानी कि तीज के उस पे फेस्टिवल पे,
1: हाँ मैम,
0: आज तीज भी है ना?
1: हाँ ठीक है, आज शादी
0: अच्छा, तो आपकी शादी हो गई है, तो
1: हो गई है।
0: आज क्या दिया आपने अपनी मैडम को, ये बताइए,
1: चॉकलेट
0: आज क्या गिफ्ट किया है उनको? तीज है ना, तो आज तो गिफ्ट बनता है ना आपको? नहीं,
1: हाँ गिफ्ट
0: चॉकलेट
1: दे
0: नहीं
1: दिया
0: दिया
1: हमने।
0: जाता आज।
1: क्या दिया जाता है?
0: बताओ सर, आप क्या
1: गिफ्ट
0: दिया आपने मैडम को?
1: दे दिया मैम हमने, जो भी देना।
0: सीक्रेट दे दिया,
1: अच्छा
0: सीक्रेट सीक्रेट है ना? ठीक
1: हाँ,
0: है जी, चलिए। कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मेरे देश की धरती
0: अच्छा, मेरे देश की धरती सोना उगले,
1: हाँ
0: उगले हीरे मोती। ठीक
1: हाँ
0: है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
1: नमस्ते
0: जी, नमस्ते। तो चलिए श्रोताओं, गाना एंजॉय करते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओल्ड इज गोल्ड एंड सदा बहार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: वेलकम बैक है जी 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद पे। और आज कहां कहां आप लोगों ने कार्यक्रम अटेंड किए ये तो हम सबको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो चल रहा है ना, आपकी फरमाइश चल रही है, पूरे हिंदुस्तान सुन रहा है आपको कि आज कौन सा देशभक्ति का गाना आप लोगों को ज़्यादा पसंद है और कौन सा ज़्यादा आप जिस गाने को सुनते के साथ ही अंदर से गूज़बम्स आ जाती हैं कि हाँ ये गाना तो जब भी कभी कोई ऐसा 26 जनवरी या 15 अगस्त का कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वो गाना सबसे पहले आप सुनते हैं। सही कह रहे हैं ना रीना जी?
6: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
5: चलिए लेते हैं अपने एक लिसनर को लाइन पे। हाँ। बात करते हैं कि उनकी क्या पसंद है।
6: जी बिल्कुल।
5: नमस्कार, हेलो फरमाइश। खेमपाल जी कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है सर जी।
5: पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की।
7: सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: बिल्कुल सही सर। और आज कैसे आपने सेलिब्रेट किया है पूरा दिन?
7: बहुत बढ़िया सर जी, आज हमारे यहाँ
5: अच्छा मेला हो रहा है, तो आज मेले में खूब सारी शॉपिंग होनी है। फिर तो ये मेला किधर लगता है? लाइन पार में, रामलीला ग्राउंड में।
6: हाँ।
5: अच्छा अच्छा, तो आप घूमने जाएंगे? आपने मेले में कुछ अपना लगाया है आपने स्टॉल? अच्छा पूरी फैमिली जाएगी, आज हमारी भी टीम वहीं पे मिलेगी आपको। तो सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? क्या बात है, एक आध लाइन तो सर जरा गा भी सकते हैं, जरा एक लाइन आप गा भी दीजिए आज। हाँ सर जितना भी याद हो सर, वही बहुत बड़ा, वही बहुत बड़ी बात है
6: सर। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए जान दिया है दिल भी देंगे। चलिए मैंने गा दिया आपके नाम का। बताइए आप आज इन्होंने सेलिब्रेट तो अच्छे से किया है, फाइनली सर मेला लग गया है, मतलब रामलीला ग्राउंड में बहुत सारे लिसनर सुन रहे हैं। अच्छा कब से कार्यक्रम शुरू होने वाला है?
7: ये 5 बजे से चालू होगा, 5 बजे से बता रहे हैं।
6: अभी तो 10 मिनट है सर बाकी 5 बजने में।
7: तैयारी पूरी हो चुकी है मैम, मैं अभी मेले में से आया हूँ।
6: अच्छा अच्छा, तो चलिए सभी श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे, अगर आप मेले का एंजॉय करना चाहते हैं तो रामलीला ग्राउंड पहुँच जाइए।
7: जी मैम।
6: जी चलिए सर हम आपको एक गाना सुनवाते, ठीक है? ओके जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
5: ओके जी।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अभी आपने फरमाइशों में आप हम सभी के साथ कनेक्ट थे। और आज 15 अगस्त यानी कि आजादी का जश्न और हरियाली तेज की खुशियां, आज का दिन है दोगुनी खुशी यानी कि डबल खुशी, डबल जश्न मनाइए। एक तरफ हमारा तिरंगा हमें देश की वीरों के बलिदान आजादी की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ हरियाली तीज यानी सावन की हरियाली खुशियों और उमंग का त्योहार है। आज तिरंगे के सम्मान दे और देश के वीरों को नमन करें और हरियाली तीज की खुशियां मिलकर बनाइए। क्योंकि अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। एफएम मुरादाबाद 89.6 की तरफ से आप सभी को यानी कि स्वतंत्र दिवस और हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि रीना जी, आज आप जरूर अपने श्रोताओं को बताएं कि आज आपने पूरे दिन क्या किया। 15 अगस्त
0: उनको पता है मैंने आज पूरे दिन क्या किया है।
1: क्या किया है आप?

0: हैं?
1: पूरा दिन स्टूडियो में ही हुए हैं।
0: आज पूरे दिन आपने जो है स्टूडियो में तिरंगा
1: यस, अभी मेरा शो अभी भी आने वाला है।
0: आपका शो भी फिर से आने वाला है?
1: यस।
0: आज आपने पूरा अपना डेडिकेशन जो है।
1: यस यस यस।
0: हमारे पास एक कॉल है लिसनर की, एक बार कॉल ले।
1: नहीं अब तो हम क्योंकि न्यूज ब्रेक का टाइम हो रहा है।
0: ठीक है, तो चलिए सभी को मैं एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत ही कहूँगा कि इसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अभी भी पूरा दिन, आधा दिन बाकी है और अपने अच्छे से आप सेलिब्रेट करें। मेला लग रहा है लाइन पार में।
1: हाँ, रामलीला ग्राउंड में
0: वो जरूर आप घूम के आए, थोड़े से मस्ती के पल अपने परिवार के साथ स्पेंड करें। और जो आज सब इतने तैयार हुए हैं ना, कुछ सब अपने अपने खास खास के लिए, तो उनके साथ भी अपना कॉलेज टाइम थोड़ा सा।
1: देखिए सर, हरियाली तीज है और भगवान शिव ने माँ पार्वती को हरी चूड़ियाँ पहनाई थी, तो आप गिफ्ट करा था उन्होंने, तो आपने क्या गिफ्ट किया है?
0: हमने भी यही गिफ्ट किया है,
1: चूड़ी।
0: हाँ।
1: सही में,
0: सच में।
1: ओ हरी हरी चूड़िया। तो अभी रामलीला ग्राउंड पे आइए मैडम को लेकर घूमने के लिए, उनको घुमा कर लेके जाइए। चलिए, इन्होंने कहा है कि पक्का हम बुला कर लेके आएंगे। तो श्रोताओं, मिलने वाले हैं अखिल भैया, पहचान लीजिएगा।
0: हरी
1: शर्ट, नहीं इसको हरी शर्ट भी नहीं बोल सकते, इसको कौन सा शर्ट बोलेंगे बताओ?
0: इसे लाइट ग्रीन ही बोलेंगे, कुछ
1: वाइट ग्रीन है से भैया। यानी कि ये वाइट ग्रीन में पहन के आए हैं, आप पहचान लेना। और इनके साथ भाभी होंगी, इनके साथ दो बच्चे होंगे। ठीक है, हम तो भाई अकेले मिलेंगे आपको।
0: वो भी ग्रीन में।
1: हाँ नहीं, ये ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन है ये। श्रोता तो आप पहचान सकते हैं,
0: सब अपने अपने ग्रीन में मिलेंगे।
1: हाँ, लेकिन हम थोड़ा, हमारा आउटफिट अलग होएगा। यानी कि ऑफिस वाला आप सभी का वो बिल्कुल सजा धजा सुंदरी, परम सुंदरी वाली आप दिखने वाली हैं वहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत। कल तो नहीं मिलेंगे हम आपको, मिलेंगे यानी कि मंडे इवनिंग मस्ती शो में शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बाय बाय।
2: किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
3: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है।
2: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरविंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, श्री अरविंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना फास्ट DS नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। ये योजना कल से लागू होगी और इसके अंतर्गत ब्यौरा दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 दिसंबर है। गोल में श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 239 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। FIH हॉकी विश्व कप में भारत का मुकाबला वेल्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
9: इट इज अ सनी डे।
10: ओ सनी शेड्स डे यार।
9: यार सॉरी।
10: और फिर मिला है तुलसी ने?
9: कितने है ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

0: आज शो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त को क्या हुआ था, तो शायद आपका जवाब होगा भारत आजाद हुआ था। लेकिन एक और सवाल, भारत कैसे आजाद हुआ और आजादी के लिए लड़ाई कितने दिन तक चली? और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। तो श्रोताओं याद रखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन शासन से आजाद हुआ, लेकिन इसके पीछे एक दो साल नहीं बल्कि लंबे समय तक चला संघर्ष था। इस कहानी को याद रखने का सबसे आसान तरीका है गुलामी, संघर्ष, आजादी। पहले अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, फिर सत्ता पर कब्जा किया, भारतीयों ने विरोध किया, आंदोलन किए और बलिदान दिए, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन एक सवाल आपके लिए, जो अंग्रेज भारत पर राज करने आए थे वो यहाँ आए कैसे थे? अरे अरे, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और आज 15 अगस्त है, आप सभी को जय हिंद जय भारत।
1: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका, द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे अंग्रेज भारत आए कैसे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। याद रखिए, व्यापार से शुरुआत, सत्ता तक पहुँच। अंग्रेज ईस्ट इंडिया

या कंपनी के जरिए भारत में व्यापार करने आए। उन्होंने भारत के मसाले, कपड़े और दूसरी कीमती चीजों में बहुत रुचि थी। शुरुआत में उनका मकसद व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि अगर सत्ता उनके हाथ में हो तो व्यापार भी उनके हिसाब से ही चलेगा। उन्होंने भारतीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई। फिर आया साल 1757, प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई के बाद बंगाल में अंग्रेज का प्रभाव बहुत बढ़ गया। आगे चलकर उनका शासन पूरे भारत में फैल गया। अंग्रेज आए थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे बन बैठे हुकूमत करने वाले। लेकिन जब किसी दूसरे देश की सत्ता आपके हाथ में आ जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? आम जनता पर। तो श्रोताओं, बने रहिए आरजे रीना के साथ। आगे हम जानेंगे अंग्रेजी शासन में भारतीयों की हालत कैसी हो गई थी। और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बचाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
2: मेरा गांव मेरी धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली विसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और गट वाली इवनिंग है श्रोताओं। तो हम बात कर रहे थे अंग्रेजों के समय आम भारतीय की जिंदगी कैसी थी। जरा कल्पना कीजिए, आप किसान हैं, खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। यही परेशानी उस समय बहुत से किसानों की थी। अंग्रेजी शासन में भारी लगान और अलग अलग करों का बोझ था। भारतीय कारीगर और बुनकर भी मुश्किल में आ गए थे। भारत के शानदार कपड़ों की दुनिया में पहचान थी, लेकिन अंग्रेजी नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ। और सिर्फ पैसा ही नहीं, भारतीयों को अपने ही देश में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अब सोचिए, जब किसी इंसान से उसकी मेहनत का फायदा छीन लिया जाए और उसे अपने ही देश में बराबरी ना मिले, तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? गुस्सा और आजादी की इच्छा। यही गुस्सा धीरे धीरे बड़ी चिंगारी बना, और उस चिंगारी का सबसे बड़ा रूप सामने आया 1857 में। और 1857 में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी? जानेंगे। अरे बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। अर्जुन आती है एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देशभक्ति गाना आप एंजॉय करते रहिए श्रोताओं, और बने रहिए अर्जुनिया के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बात कर रहे हैं आज 15 अगस्त यानी कि भारत कैसे आजाद हुआ था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों में पहले ही असंतोष था। नई एनफील्डर राइडर और कार सूत्रों से लेकर धार्मिक भावनाओं से जुड़ी खबरों ने इस गुस्से को और भड़का दिया। फिर आया वो दौर यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विरोध खुलकर सामने आया। इसके बाद यह आंदोलन दिल्ली और फिर उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया। इस संघर्ष में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बेगम हजरत जैसे कई प्रमुख नाम सामने आए। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। झांसी की रानी ने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया था। हालांकि 1857 का विरोध सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेजों को एक बड़ा संदेश दिया गया। भारत के लोग गुलामी को हमेशा स्वीकार नहीं करेंगे। 1857 ने आजादी की लड़ाई को पहली बड़ी चिंगारी दी और फिर लड़ाई को एक नई दिशा देने आए वो महान व्यक्ति। लेकिन महान व्यक्ति वो कौन थे, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बस आते एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर बताएंगे कि आखिरकार वो महान व्यक्ति कौन थे।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

अब जरा एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। गांधी जी के हाथ में बंदूक नहीं थी, सेना नहीं थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी? इसका जवाब है सत्य और अहिंसा। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आर्जरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। यानी महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उन्होंने भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह रास्ता अपनाया। भारत में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले आम लोगों की परेशानियों को समझना शुरू किया। फिर साल 1917 जहां चंपारण बिहार, यहां किसानों को नील की खेती से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए और उनकी समस्या को अंग्रेजी प्रशासन के सामने उठाया। फिर आया 1920 का असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने लोगों से कहा, अगर हम अंग्रेजी शासन का सहयोग ही नहीं करेंगे तो विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे और उनके संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे तो उसकी ताकत कमजोर होगी।

गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, संदेश दिया करो या मरो। तो श्रोताओं, गांधी जी की लड़ाई तो तीन शब्दों में थी, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। लेकिन आजादी की कहानी में सिर्फ अहिंसा नहीं थी, बल्कि नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने क्रांति का रास्ता चुना और अपनी जान तक देश के नाम कर दिया। इन वीरों की कहानियां भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। भगत सिंह इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बलिदान। अब बात कहे उन नौजवानों की जिनका नाम सुनते ही आज भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भगत सिंह, जरा सोचिए, उम्र सिर्फ 23 साल और सामने मौत का फंदा, लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर डर नहीं था। भगत सिंह कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। उनका सपना था कि भारत के लोग अपने देश के फैसले खुद ले। साल 1928 में लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को गहराई से प्रभावित किया। फिर आया 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाना था। सबसे खास बात, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि गिरफ्तारी दी। अदालत में ही उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। फिर आया 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण न करने का प्रण लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ संस्था संघर्ष को आगे बढ़ाया। भगत सिंह की उम्र छोटी थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। आज जब हम आजादी की बात करते हैं, तो इन नौजवानों का बलिदान जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि अब कहानी पहुंचने वाली है उस तारीख पर जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था, यानी कि 15 अगस्त 1947। इसके बारे में भी बात करेंगे श्रोताओं, बस एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

गुड वाल इवनिंग है श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त 1947 आजादी की वो सुबह। अब जरा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिस पर लगभग 2 सदियों से अंग्रेजों का शासन था, लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, किसी ने जेल काटी, किसी ने लाठी खाई, किसी ने गोली खाई और किसी ने अपनी जान दे दी। और फिर आया साल 1947, ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला लिया, लेकिन इसके साथ भारत का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, विभाजन की हिंसा में बहुत से लोगों की जान गई। अब आते हैं 14 अगस्त की आधी रात पर, भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। और फिर 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और एक नए भारत की शुरुआत हुई। सोचिए दोस्तों, जिस देश में कभी अंग्रेजों का कानून चलता था, अब उसी देश को अपना भविष्य खुद तय करना था। इसीलिए 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, 15 अगस्त आजादी की तारीख। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आजादी की इस खुशी के साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा था, इसीलिए यह दिन हमें खुशियों के साथ साथ इतिहास की कुर्बानियां भी याद दिलाती है। और अब आखिरी सवाल, आज जब हम आजाद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, बताइए, आप महसूस करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689 पर।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

श्रोताओं, हमारा देश आजाद है, इसीलिए हर घर तिरंगा फहराना बहुत जरूरी है। और आई होप कि आप सभी ने अपने छतों पर आज झंडा भी फहराया होगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आर्जरीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। आजादी मिली, अब इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी। अब तक हमने पूरी कहानी सुनी। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए, धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा किया, भारतीयों ने विरोध किया। 1857 में बड़ी क्रांति हुई। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, आजादी का मतलब है हम अपने देश के भविष्य को खुद बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ले। अगर एक बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, वो देश के लिए योगदान दे रहा है। अगर कोई सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकता, वो देश को साफ रखने में योगदान दे रहा है। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हैं। अगर हम जाति, भाषा या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हम देश को मजबूत बनाते हैं। देश सिर्फ सीमा पर खड़ा सैनिक नहीं बचाता, देश को मजबूत हर जिम्मेदार नागरिक बनाता है। और अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है, एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरे

0: छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
0: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
1: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
0: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
0: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
0: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
1: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
0: और सबसे जरूरी,
1: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
0: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
1: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
0: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: कैसे हालचाल है। मेरा नाम आरजे आनंद है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। सो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू
1: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: जी सर, इट्स माय प्लेजर। सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
0: ऑलराइट।
1: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
1: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
0: ऑलराइट। अच्छा पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
1: हाँ रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
0: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
1: नहीं डेफिनेटली।
0: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
1: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है, वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं। तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती है, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया। क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है, बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
0: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में?
1: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है, छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं, मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
0: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
1: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते।
0: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा,
1: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
0: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
1: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
0: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को मुझे लगता है
1: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
0: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
1: देखिए बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
0: ओके,
1: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है। जो हम लोग अवॉइड,
0: क्या बात है, तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, इससे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब?
1: देखिए आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
0: करेक्ट
1: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
0: अब नहीं चलता है,
1: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाई चांस चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
0: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
1: एग्जैक्टली।
0: ऑलराइट। अच्छा सर जी प्लीज टेल अस आप कुछ कह रहे हैं।
1: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं ठीक है तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट है ज्यादा परमानेंट होते हैं और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
0: ओके अच्छा ओके। सो डॉक्टर साहब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन जिसे हम कह सकते हैं ना कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
1: सर दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
0: ओके।
1: और आपको ताज्जुब होगा सुन के ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
0: ओके।
1: और मतलब इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है इस वजह से उन्होंने डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
0: ओके।
1: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है।
0: ओके।
1: और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
0: ओके डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारी आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का स्पेशली आज के जेंसी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
1: सर ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
0: ओके।
1: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
0: ठीक
1: है, बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
0: जी सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
1: डेफिनेटली।
0: ऑल राइट, जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो क्या ही चला जाएगा,
1: ऐसा नहीं चलेगा।
0: ऑल राइट,
1: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
0: ऑल राइट अच्छा जी, चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को 5-5 महीने 6-6 महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
1: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हो, कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो 1 महीने में खराब हो जाता है।
0: ओके।
1: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट 6 महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
0: ऑल राइट चलिए, तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, और तो ये क्या सही बात है?
1: इट्स वेरी ट्रू। देखिए जो हमारे दांत का इनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं, और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे, जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआं होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रुप बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रुप बन जाते हैं।
0: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
1: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
0: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
1: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में।
0: समझ,
1: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता।
0: हाँ, बिल्कुल
1: ठीक है। बास मेथड बोलते हैं, BASS, बास मेथड।
0: ओके,
1: मतलब जिन लोगों को देखना वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
0: अच्छा सर, कई बार जिससे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लौंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
1: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
0: ओके,
1: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसा रह गया, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गरम लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है, उतना गंभीर दर्द होता है।
0: तो सर, इससे बचने का,
1: इससे बचने का एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो, हाइजीन, ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
0: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
1: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है।
0: Okay.
1: वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
0: Exactly.
1: और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो।
0: तो
1: मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
0: बिल्कुल,
1: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
0: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
1: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
0: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
1: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन के खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते।
0: करेक्ट,
1: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
0: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
1: जी
0: ओके। सो दोस्तों देखिए, तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
1: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन, मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
0: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है?
1: नहीं, बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों दांत
0: है,
1: अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
0: ओके,
1: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती है पेट से, वो बदबू करती है।
0: ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
1: सर, ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
0: ओके,
1: वंस ए वाइल्ड ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
0: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं, कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में जाना है,
1: वन से वाइप
0: जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं

0: ब्लीच करा के आ रहे करा के आ रहे, तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती हैं तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
1: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
0: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
1: खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा। जब पायरिया, जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
0: ओके,
1: धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा।
0: ओके,
1: और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
0: ओके,
1: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है।
0: ऑलराइट,
1: अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
0: जैसे
1: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
0: जी,
1: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
0: अच्छा।
1: और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखते ही लगा तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा है। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी है लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये उम्मीद था कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटखा क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल डाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी डाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल डाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब, डाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको डाढ़ उखड़वाई, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
0: ओह माय गॉड।
1: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
0: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
1: हाँ गलत है वो।
0: ओके,
1: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर।
0: ओ माय गॉड, कई बार होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही एवं किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
1: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
0: ओके,
1: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है,
0: Correct.
1: तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है।
0: Okay.
1: इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
0: ओके okay. अच्छा जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है, वो येलो परत क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
1: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
0: ओके
1: okay. वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
0: ओके
1: okay. तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
0: ओके
1: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
0: ओके
1: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है, और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे हैं, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
0: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
1: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
0: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती,
0: इनफैक्ट फंस और जाएगी। छोटी छोटी होती है वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
1: एग्जैक्टली, ब्रश से साफ मिला के।
0: तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं, जागो, अब ब्रश करने की बारी। आप जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये छोटा सा है काम। सर एक डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? अभी ये जानना बहुत जरूरी है, आपकी वाइब चेक कर लेते हैं। आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
1: नहीं, डेफिनेटली मतलब इट इज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आपका मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल।
0: एग्जैक्टली,
1: ठीक है,
0: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती हैं। आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल, आगे बढ़ेंगे सर। एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे, और वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
1: सर, अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं, तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं। और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं। इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बसरते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
0: एक्सपीरियंस होल्डर।
1: एग्जैक्टली, वो सारा स्किल का खेल है। अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार, मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा। इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है, तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटाप्रोजोल, ठीक है, रेफिप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा,
0: करेक्ट।
1: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा?
0: बिल्कुल सर।
1: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है। जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है, तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस, कब्ज और इन सब चीजों से गुजरना।
0: ओके, सो श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी, कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बार ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइट होता है, वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
1: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
0: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो, कैल्शियम, ये दांतों के लिए बहुत जरूरी है, तो इस तरह की कुछ
1: दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी हैं, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ठीक है। अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा? बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए?
0: सही बात है,
1: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया इनको? जरूरत है।
0: करेक्ट।
1: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो हिनमानी वो नहीं खाएगा।
0: करेक्ट,
1: ठीक है। आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
0: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर, जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
1: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: ओके।
1: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
0: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर, कुछ और कहना चाहते हैं आपसे? मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं अभी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
1: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुरादाबाद आके यहाँ, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
0: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा
1: नहीं आएगा। सही कह रहे हैं।
0: तो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और आरजे आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
1: थैंक यू
0: सर, थैंक यू सो मच।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट, और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: Mixing in the house.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद। अगर

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा। अगर

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और मेरा नाम आनंद है और प्रोग्राम है खेती किसानी। आज हम बात करेंगे, अब किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो किसानी खेती किसानी नहीं भी करते हैं, आज उनके लिए भी बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस प्रोग्राम के जरिए। तो आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा क्योंकि आज आपको तमाम सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में जरूर होना चाहिए जिससे हम ढेर सारी बातचीत करें, कोई तो ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जिनसे हम अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं जो हमारे किसान भाई लगातार हमें संदेश पहुंचाते हैं। तो आज हमने आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं श्रोताओं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पिराई 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद में गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमने डॉक्टर विनय कुमार सिंह को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: जी सर, मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को आप एक बारी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपके एफएम मुरादाबाद के समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम और सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला से हूँ और मैं बेसिकली आज किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज चर्चा करने के लिए आपके स्टूडियो में मौजूद हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया और अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। आज का जैसे कि आपने अभी विषय में जो है चर्चा किया है कि आज का हमारा विषय क्या है, तो गन्ना सर्वेक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश में और पूरे देश में हालांकि चलता है जहां जहां गन्ना उत्पादक होता है।
0: जी जी।
1: तो गन्ना सर्वेक्षण जो है क्यों जरूरी है और इसमें किसानों की क्या भूमिका है, इस विषय के ऊपर हम आज

0: समझना जरूरी होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: जी। गन्ना सर्वेक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है
1: जी सर,
0: जिसके माध्यम से किसानों को खेत में बोए गए जितना भी क्षेत्रफल होता है उसकी किस्म क्या लगाई हुई है और फसल की स्थिति क्या है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। यह कार्य गन्ना विभाग और चीनी मिल दोनों के तत्वाधान में किया जाता है, ताकि किसानों को सही पर्ची, समय पर पर्ची, भुगतान और अन्य सुविधाएं आदि सभी चीजें मिल सकें। ये है हमारा गन्ना सर्वेक्षण का उद्देश्य।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है चर्चा करी विस्तार से। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गन्ना सर्वेक्षण किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
0: जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा पॉइंट, क्योंकि सही सर्वेक्षण से किसानों का वास्तविक गन्ना क्षेत्र दर्ज होता है
1: जी,
0: जिसे उन्हें समय पर गन्ना पर्ची मिलती है और डाले गए या कह सकते हैं कि आपूर्ति किए हुए गन्ने का उचित मूल्य उनको मिलता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। गलत सर्वेक्षण से किसान का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
1: अच्छा सर, किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो आपको लगता है कि छोटी छोटी सावधानियां अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो क्या रखनी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई जो है सर्वेक्षण के समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आधारशिला अगर है तो हमारा सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण अगर गलत हो जाएगा तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो है सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है हमारा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, जिसे वो लोग क्या करते हैं कि स्वयं ना होकर के किसी को भेज देते हैं कि आप चले जाइए, जिसको उस गन्ने की किस्म, उस गन्ने की जो है कितना क्षेत्रफल है इत्यादि जो है जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो गलत सूचनाएं वहां पे दर्ज करा देते हैं, जिसका उनको नुकसान आगे चल करके उठाना पड़ता है। तो मेरा अपील ये रहेगा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, और दूसरा है गन्ने का सही क्षेत्रफल बताएं, हालांकि वो सर्वे अपने आप ही करते हैं, एक्चुअल जितना भी उनका एरिया आएगा वो उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी जानकारी वो मांगते हैं तो क्षेत्रफल अपना सही बताएं। और तीसरा है हमारा गन्ने की सही किस्म एवं बुआई की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि गन्ना अभी हमारा बढ़वार के समय पे है, गन्ने की जो आइडेंटिफिकेशन होती है तो उनके कई सारे चरण होते हैं, कुछ की पौध पे निर्भर करती है, कुछ की उसके गन्ने की रंग पे निर्भर करता है, कुछ उसकी गांठों से उसकी जो है पहचान होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको पहचानना अभी इस समय पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है, तो जो भी किस्म आपने बोई हुई है तो वो सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। और अगला पॉइंट हमारा है कि किसी भी गलती को तुरंत जो है संबंधित अधिकारी को अवश्य बताएं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने अधिकारी को जो वहां पे मौजूद है सर्वेक्षण के समय, तो उसको आप अवश्य बताएं। सर्वेक्षण होने के उपरांत रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें, जितना भी रिकॉर्ड आपको स्लिप मिलता है स्लिप में एक बार चेक कर लें, अगर उसमें कोई भी आपको त्रुटि लग रही है जिसमें या संशोधन की आवश्यकता है तो उस चीज का आप जांच करें और तुरंत संबंधित अधिकारी या कार्यालय में संपर्क करके उसको संशोधित अवश्य कराएं।
1: किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे थे अभी। बहुत अच्छे से डॉक्टर विनय कुमार जी ने इस पे चर्चा करी। सर अगर मैं आपसे वहीं दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ूं, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गन्ना सर्वेक्षण की पर्ची वितरण से क्या संबंध है, इसके विषय में अगर थोड़ा आप बताएं तो।
0: जी बिल्कुल, देखिए आधारशिला हमारा सर्वेक्षण होता है
1: जी,
0: गन्ना पर्ची सर्वेक्षण के आधार पर ही जारी होती है। यदि सर्वेक्षण सही होगा तो किसान को उसकी उपज के अनुसार समय पर पर्ची प्राप्त होगी। गलत सर्वेक्षण से पर्ची कम या देरी से मिल सकती है, जिससे किसान भाई को आगामी गन्ना आपूर्ति बाधित हो सकती है
1: जी। ओके, गन्ना सर्वेक्षण में किसानों की भूमिका क्या रहती है सर, क्या है मतलब सबसे ज्यादा उनकी भूमिका?
0: जी बिल्कुल, देखिए किसानों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है
1: जी।
0: किसान सही जानकारी देकर, सर्वेक्षण टीम का सहयोग करके तथा रिकॉर्ड की पुष्टि करके पूरी प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। एक जागरूक और सफल गन्ना उत्पादक किसान सर्वेक्षण के दौरान गहनता से और बड़ी ही सूझबूझ से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है उसकी आगामी गन्ना आपूर्ति इसी सर्वेक्षण पर निर्भर करती है। तो सर्वेक्षण में किसानों की अहम और बहुत ही सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों

0: जो है हमारे साथ बातचीत करी और आगे भी हम आपसे करते रहेंगे। एक सवाल है, आधुनिक तकनीकी से गन्ना सर्वेक्षण में क्या लाभ हो रहा है, इस विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को।
1: जी बिल्कुल, देखिए आधुनिकता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जा रही है और जैसे कि डिजिटल इंडिया हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है और सभी लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा देश अग्रसर भी है डिजिटल इंडिया की ओर।
0: जी जी,
1: आजकल क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, डिजिटल प्रणालियां फॉलो हो रही हैं, तो हर क्षेत्र में एक जो है एक क्रांति सी आई है जब से ये डिजिटल इंडिया चला है। तो इस गन्ना सर्वेक्षण में भी आजकल मोबाइल ऐप और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण हो रहा है जो कि अधिक पारदर्शी है, सुगम है और तेज है। इससे गलतियों की संभावना कम होती है तथा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारा क्या है कि जैसे कि अभी जानकारी के अनुसार जैसे सभी लोग पहले क्या होता था कि पर्चियां कार्यालय में जाके पूछते थे कब आएगी और कब हमारा भुगतान आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है गन्ना विभाग ने एक ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है जिसकी जानकारी आप जो है ई गन्ना ऐप से उपलब्ध रहती है। इस ई गन्ना ऐप में किसान भाई अपनी कुल सर्वे जो कि उनका सर्वेक्षण हुआ है तो कुल कितना सर्वेक्षण हुआ है इसकी भी जानकारी मिल सकती है, कितने उनके सर्वेक्षण में प्लॉट शामिल हुए हैं उसकी भी जानकारी रहती है और प्रत्येक प्लॉट का एरिया कितना है वो भी उनको पता चल जाता है। कुल पर्चियां उनकी कितनी बनी है, उनका बेसी कोटा क्या है, बेसी कोटा असल में पिछले 5 वर्षों की आपूर्ति के आधार पर बनता है, इसमें रेशियो रहता है पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड, फिर पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड और फिर पिछले 5 वर्षों का, इनमें से जो भी वैसी कोटा टोटल आपूर्ति जोड़ी जाती है, फिर उनको जितने ही भी वर्ष होते हैं जैसे 2 साल है तो 2 से डिवाइड करना, 3 साल का लिया तो 3 साल से डिवाइड करना और अगर 5 साल का लिया है तो 5 से डिवाइड करना, इनमें से जो भी जैसे मात्रा में ज्यादा होगा जितने कुंटल उसमें ज्यादा होगा तो उसी को ही बेस मान करके उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं। तो इसमें बेसी कोटा की भी जानकारी मिल जाती है, कुल सप्लाई पिछले 5 वर्षों की, ये भी किसान भाई अपने आप स्वयं में ही ई गन्ना ऐप पे देख सकते हैं। तो इत्यादि जो है अनेकों प्रकार की जानकारी हमारी ई गन्ना ऐप में मिल जाती है जिसमें उनको भुगतान आपूर्ति और जो है सारी किस किस डेट पे निकली है, अगर उन्होंने कोई पर्ची नहीं लगा पाए, गन्ने की छिलाई किसी कारणवश नहीं हो पाई तो वो अगर उनकी मिस हो जाती है पर्ची तो उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहती है। तो ई गन्ना ऐप बहुत ही सुगम और आसान और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए यूजफुल होता है किसान भाइयों के लिए भी।
0: जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी किसान की फसल सर्वेक्षण में छूट जाए तो वो क्या करना चाहिए, वो क्या करे इस सिचुएशन में।
1: जी बिल्कुल, देखिए अहम मुद्दा है
0: जी,
1: ऐसी स्थिति में किसान तुरंत अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग
0: जी
1: अथवा संबंधित चीनी मिल कार्यालय में संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन करवा सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के उपरांत कृषकों को एक स्लिप जिसको कच्चा कैलेंडर भी कह सकते हैं ये अत्यधिक उपलब्ध करा दिया जाता है जिसमें उनको प्रत्येक जो है कह सकते हैं कि प्लॉट का जिक्र उसमें रहता है, एरिया कितना है, किस्म क्या लगाई है, तो सब कुछ उसमें रहता है। यदि किसी किसान भाई का कोई प्लॉट छूट जाता है अथवा गन्ना प्रजाति का चयन गलत हो जाता है आदि का संशोधन 15 कार्य दिवस के अंदर अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग में संपर्क करके उसको करा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, गन्ना सर्वेक्षण का चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, देखिए गन्ना सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सही सर्वेक्षण से चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता का सही अनुमान लगता है कि क्योंकि उनके पास में क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, कई सारे गाँव रहते हैं, कई सारी गन्ना समितियाँ होती है, उन समितियों में कई सारे किसान होते हैं तो क्षेत्र में कितनी गन्ने की उपलब्धता होती है इससे उनको अनुमान मिल जाता है। दूसरा चीज है गन्ने की पर्चियों का निर्धारण और पर्चियों को जारी करना यानी कि निर्गत करने की योजना वो आसानी से बना सकते हैं जिससे मिल संचालन और उत्पादन योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है।
0: जी बहुत ही बढ़िया, श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खेती किसानी और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय जी मौजूद हैं स्टूडियो में और आज हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं गन्ने के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल, गन्ना सर्वेक्षण में सामान्य गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो।
1: जी बिल्कुल, देखिए सावधानी ही हमारी जो है जागरूकता की ओर अग्रसर करती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: देखिए, अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो गलतियों की संभावना नहीं रहेगी।
0: नहीं रहेगी
1: जी। इसमें अगर फिर भी अगर सामान्य गलतियां कौन कौन सी अक्सर किसान कर देते हैं तो उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे पहला, गलत क्षेत्रफल दर्ज हो जाना।
0: जी जी।
1: दूसरा है हमारा, गलत किस्म दर्ज हो जाना या गलत किस्म उन्होंने उसमें दर्ज कर लिया है।
0: जी जी।
1: तीसरा हमारा है फसल छूट जाना। जैसे फसल का मतलब यहाँ पे है हमारा कि जैसे कोई फसल लगी हुई है और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया है तो वो प्लाट छूट जाता है, तो प्लाट आप ऐड करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह सकते हैं कि फसल प्रकार, जैसे कि कोई किसान है उसके यहाँ पेड़ी है तो पेड़ी की जगह पे पौधा हो गया है, या पौधा है, पौधे में भी जो है कैटेगरीज होती हैं। एक शरदकालीन होता है जिसको ऑटम प्लांटिंग कहते हैं और एक वसंतकालीन पौधा होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग प्लांटिंग कहते हैं।
0: जी।
1: तो जैसे पौधा है, किसान ने बोया हुआ है शरदकालीन, जिसकी पर्चियां जो है अमूनता चीनी मिल पहले जो है निर्गत करती है, लेकिन अगर धोखे से वो वसंतकालीन हो जाएगा तो किसानों को वो पर्ची विलंब से मिलेगी, तो इससे किसानों को दिक्कत हो सकती है और उनका जो है प्लॉट देरी से उसकी सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या गलती होती है, जैसे किसान द्वारा जैसे सही जानकारी नहीं देना, जैसे जो भी उनसे पूछा जाता है तो वो अगर सही और सटीक जानकारी नहीं देंगे तो उसमें भी जो है गलतियां हो सकती हैं। और अगला हमारा जो है सामान्यतः गलती कौन सी करते हैं, जैसे रिकॉर्ड की जांच नहीं करना। जैसे उनको स्लिप मिलता है, उन्होंने सर्वे करवा दिया, स्लिप लेकर के अपने घर पे रख लिया।
0: हाँ जी।
1: वो गलत है, आप स्लिप लीजिए, उसको आप पढ़िए। आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका घर में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उसके माध्यम से अपने रिकॉर्ड की जो है जांच अवश्य करें, ताकि आपका कोई प्लॉट तो नहीं छूटा। प्लॉट छूटा तो किसी उस पर्टिकुलर प्लॉट का कोई हमारा जो है क्षेत्रफल कम या ज्यादा तो नहीं हुआ, या गन्ने की प्रजाति गलत तो नहीं हुई, या गन्ने की किस्म पेड़ी अथवा पौधा या पौधे से पेड़ी ये तो नहीं हो गया, तो इत्यादि तरीके की ये गलतियां मुमता होती हैं। इनको विशेषतः किसानों को ध्यान में रख करके अपना जो है ये सर्वेक्षण कार्य पूरा कराना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारा विषय था गन्ना सर्वेक्षण का महत्व एवं किसानों की भूमिका और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनय कुमार साहब से और बहुत अच्छा लगा सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जो भी किसान भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियां जो आपके द्वारा दी गई हैं वो उनको जरूर काम में आएंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आरजे आनंद और एफएम मुरादाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 MHz पे, प्रोग्राम है खेती किसानी। डॉक्टर साहब, तमाम चर्चाएं हमने कर ली आपके साथ मिलकर गन्ने के ऊपर, अब मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो हमारे तमाम श्रोता साथी किसान भाई आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जाते जाते इस प्रोग्राम में।
1: जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे ही शुरुआत में आपने जिक्र किया था गन्ना सर्वेक्षण के ऊपर,
0: जी जी,
1: तो अपने जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जनपद में जो कि हर बार हर साल होता है, ऐसे ही इस साल भी जो हमारा आगामी गन्ना पेराई सत्र है, यानी कि जो आगे आने वाला पेराई सत्र है 2026-27, इसके लिए गन्ने का सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ हो गया है, जो कि 1 मई से 30 जून तक होना सुनिश्चित हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे 1 मई से 30 जून तक होता है, इसमें अभी क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज है, तो अमूनता क्या है कि कृषि विभाग और ये चीनी मिल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये धूप की वजह से ये प्रातःकाल जो है अतिशीघ्र कह सकते हैं कि जल्दी सुबह इसको जो है किया जाता है ताकि धूप से बचा जा सके और बचना भी जरूरी है। तो देखिए ये कार्यक्रम हमारा 1 मई से 30 जून 2026 तक चलेगा।
0: जी।
1: प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, यानी कि प्रत्येक जिले में समितियां होती हैं, गन्ना समितियां, किसान भाई सभी लोग जानते होंगे, तो प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है और प्रत्येक समिति में गन्ना पर्यवेक्षक गण लगे हुए हैं, इन काम को बहुत ही जो है लगन से कर रहे हैं इतनी धूप और इसकी वजह से, लेकिन फिर भी क्या है कि जो है गलतियां वगैरह होती रहती हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है, और दूसरा क्या है कि अपने क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क बना के रखना है। जो भी किसान भाई हैं, क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक प्रत्येक गांव के होते हैं, उनसे संपर्क में रहना है। सभी किसान भाई गन्ना सर्वेक्षण को गंभीरता से लें। प्रत्येक गन्ना समिति में अनेक गांव होते हैं तथा प्रत्येक गांव में अनेकों किसान भी होते हैं। अतः जिस दिन आपके गांव में सर्वे का कार्य हो रहा हो तो आप सभी किसान भाई अपने प्लाट पर स्वयं उपस्थित हों, किसी और को ना भेज करके स्वयं उपस्थित हों, ताकि आप सही उनको जानकारी दें, सही सर्वेक्षण ही, समय पर पर्ची, उचित भुगतान और किसान हितों की सुरक्षा का आधार होता है।
0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियाँ मिली हैं आपके द्वारा, और मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तमाम चर्चा आपने करी, इतनी खूबसूरती के साथ आपने जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में आते रहें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। सर कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है आप कहना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों से?
1: देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि सही गन्ना सर्वेक्षण न केवल किसान की आय को सुरक्षित करता है
0: जी बिल्कुल,
1: बल्कि चीनी उद्योग एवं कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: इसलिए सभी किसान भाई सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण सहयोग करें एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, ताकि आपकी पर्चियों की कैलेंडरिंग सही से हो सके और आपकी आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके। आपकी आपूर्ति ही आपकी आय का आधार होती है।
0: सर आपने ये जो लास्ट में बात बताई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी।
1: ये जो है क्योंकि आपकी जो भी आपूर्ति रहेगी यही आपकी आय का आधार है। आपकी पर्चियां, आपका खेत, आपका गन्ना कितना भी हो, अगर समय पर पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो आपकी आपूर्ति बाधित होगी, क्योंकि आपूर्ति अगर आपकी बाधित हो जाएगी तो आपको भुगतान भी बाधित ही मिलेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों थैंक यू सो मच, आपने भी इसको बहुत ध्यान से सुना है, मुझे पता है आपको भी बहुत जानकारियां मिली होंगी। तो ऐसी जानकारियों से भरे प्रोग्राम्स आपके लिए आते रहेंगे। आप बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जहां बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ ये संवाद करके, बातचीत करके, वार्ता करके?
1: जी बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने हमें यहां पे बुलाया
0: जी।
1: मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपनी तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके स्टूडियो की भी तरफ से समस्त श्रोतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों से जुड़ने का एक अवसर हमको मिला
0: जी।
1: और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आपने यहां पे अवसर के लिए मुझे आमंत्रित किया है।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको रेडियो में आके, पहली बार आए?
1: जी नहीं, मैं जो है AIR
0: आकाशवाणी में जाते रहते होंगे
1: जी। आकाशवाणी कोटा में मैंने एक दो बार मैंने
0: प्रोग्राम्स किए
1: जी, प्रोग्राम किए हैं खेती किसानी से संबंधित। हाँ आपके स्टूडियो में मैं पहली बार
0: मुरादाबाद में पहली
1: जी
0: बार।
1: जी
0: अच्छा, तो आप मुरादाबाद से हैं सर?
1: जी नहीं जी, मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी,
0: लखीमपुर
1: जी, उत्तर प्रदेश से ही।
0: ओके,
1: बट अभी मैं श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कृषि विभाग में अभी जो कार्यरत हूँ।
0: क्या बात है सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर, और थोड़ा सा आपके बारे में जान लिया मैंने, क्योंकि वो जब हम बातचीत करते हैं तो संवाद के दौरान हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है ना वो झलकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी लैंग्वेज में वो लग रहा था मुझे कि आप थोड़ा सा उस साइड से ही बिलोंग करते हैं शायद।
1: जी, जी,
0: तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे आप दोबारा भी जरूर आएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमें अवसर देंगे
0: जरूर सर। अरे जरूर सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और नए खास मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: उठा माझा किंग, ओ माझे किंग.
1: मी
0: घरी नाही जायचं का? मी तुझी गर्ल, जाने जी गर्ल, मी चम्मच छलो, तू माझा किंग किंग किंग किंग.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा. 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7055011681.
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.
4: हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरशे आनंद.
5: हाय प्राची, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप?
4: मैं बहुत अच्छी हूं. और आज हमारे साथ जुड़ गए अंतरिक्ष.
5: अच्छा, अंतरिक्ष में तो मैं बहुत बचपन से जाना चाहता था यार. सच में तुम और आज अंतरिक्ष गई है?
4: और आज अंतरिक्ष हमारे साथ
5: है. कैसे हो सकता है, अंतरिक्ष पे लोग जाते हैं, वो नीचे कैसे आ सकता है?
4: हमारे साथ अंतरिक्ष गुप्ता जुड़ गए.
5: ओ, प्राची गुप्ता आज अंतरिक्ष गुप्ता को लाई है पकड़ के. वेरी वेरी वेरी अमेजिंग यार.
4: तो आज हम अंतरिक्ष से बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आज हमें इस कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आने वाले हैं.
5: गाइस, मैं पहले बचपन में सोचता था यार, ये अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, वहां पर कैसे पहुंचते होंगे. लेकिन आज साक्षात हमारे स्टूडेंट अंतरिक्ष जी पधारे, तो हम उनसे ढेर सारी बात करेंगे. हाय अंतरिक्ष, वेलकम टू FM मुरादाबाद. कैसे हैं आप?
6: हाय आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. और आज तो आप दोनों भाई बहन की तरह लग रहे हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी.
5: क्या बात है. वैसे आज तक तो किसी ने भाई बहन बोला नहीं था, लेकिन आपने बोल के हमारा जो बेइज्जती की है हमारी, इसके बाद हम तो एक अच्छे फ्रेंड है ना यार. भाई बहन कब बन गया प्राची?
6: पर आप लोग बड़े,
5: मुझे समाज और जगत का भाई नहीं बनना, मैं बन बन के परेशान हो गया हूँ यार. अब तो छोड़ दो भाई. प्राची टेल अस, हम एक अच्छे फ्रेंड है.
4: हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स भी हैं.
5: हाँ एग्जैक्टली. और भाई बहन बोल भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है यार, बन जाते हैं
4: भाई बहन फ्रेंड. हम सब है.
5: अब बताओ आप,
4: और फिलहाल
5: अंतरिक्ष जी आप बताओ, आपने आते ही अंतरिक्ष वाला सवाल पूछ लिया यार, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. खैर, कैसे हाल चाल है आपके?
6: मैं बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है.
5: आप अपने बारे में थोड़ा बताओ यार.
6: मेरा नाम अंतरिक्ष गुप्ता है, आई एम 22 इयर्स ओल्ड. मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन करी है TMU से, BCA करा है. और अभी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करा है मैंने नया नया, इट्स फॉर केटरिंग इवेंट मैनेजमेंट, एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ क्लाउड किचन एज वेल.
5: वाह, क्या बात
6: है. हम लोग क्लाउड किचन शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे पास सारी चीजें होंगी. और अभी मैं फिलहाल बिजनेस पे ध्यान दूंगा, अब बाकी सब नॉर्मल, सब बढ़िया चल रहा है.
5: 22 ईयर ओल्ड हमारे साथ अंतरिक्ष हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ चुके हैं. 22 साल का लड़का जहां सिर्फ यही कंफ्यूजन में रहता है कि यार क्या करूं, किधर जाऊं, किसको दिल दूं, किसे सिम तोड़ू, किसके जोड़ू, मतलब वो उसी में रहता है. और ये बंदा अपने इवेंट मैनेजमेंट की प्लानिंग करके बैठे हैं, मतलब और साथ में बिजनेस को भी यू नो शुरू करने का प्लान कर ही चुके हैं. तो मतलब ऐसे लोग तो होते हैं जो जिंदगी में कामयाब बनते हैं और आगे चल के APJ अब्दुल कलाम जिनको हम नाम देते हैं, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं यार. बिग शाउट आउट, मैं सच बता रहा हूं, यू नो. और इनमें मैं भी हूं भाई, मैं भी एक सही एज में सही प्लेटफॉर्म पे आ गया हूं. बहुत कम लोग होते हैं मेरे और इनके जैसे जो एक सही एज में सही काम को करते हैं. आप लोग देख रहे हैं ना, आपसे भी रिक्वेस्ट है, कर लो भाई कुछ. तो अंतरिक्ष जी, टेल अस यार, कैसे थॉट आई कि 22 साल की उम्र में इवेंट मैनेजमेंट करना है या ऐसा कुछ प्लान करना है, यू नो?
6: तो मैंने जब मैं यहाँ पे थर्ड में था, मैंने थर्ड के बाद ना मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था.
5: ठीक है.
6: तो मैंने वहां से जो अपनी पढ़ाई शुरू करी वो मैंने कैम्ब्रिज करी थी, जो लाजपत नगर के जस्ट ऑपोजिट है. मैंने वहां पे अपने आप को जो एक्सप्लोर करा, मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी, जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बोल बहुत अच्छा सकता हूँ.
5: वेरी नाइस.
6: मेरी स्टेज अपीयरेंस बहुत अच्छी है. वहां से मुझे अपने आप में एक ये रिकग्नाइजेशन मिला कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ. फिर जब मैं 9th में आया, 10th में आया, बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते रहे. मैं एक लेडी से मिला था जो उस टाइम पे वहां से साइकोलॉजी कर रही थी.
5: ओके.
6: और तो जब मेरी उनसे बात होने लगी, कन्वर्सेशंस होने लगी ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने आप में जानी कि हाँ, मुझको साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मुझे लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उन्हें जानने में बहुत मजा आता है. ऐसे ही करते करते करते करते मेरे को इवेंट मैनेजमेंट का ख्याल तब आया जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे दो लोगों से बात करके उनको मिलवाने में मैच मेकिंग बहुत अच्छी लगती है।
5: नहीं, नहीं,
6: तो जब वो एक शादी का मोमेंट चल रहा होता है ना, तो मेरे को पता है उनके कहां से कैसे मिले थे, तो वो मेरे लिए भी बहुत एक इमोशनल मोमेंट होता है।
5: नहीं, नहीं,
6: कि यार ये लोग फाइनली मिल गए, इन्होंने इतना स्ट्रगल करा,
5: सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, एकदम जेन्युइन वाली,
6: बहुत जेन्युइन वाली, और वो दिल से दुआ देके जाते हैं यार। वो बोलते हैं कि भाई अगर आप नहीं होते तो शायद ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। वो जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत फीलिंग होती है।
5: क्या बात, अल्टीमेट
6: फीलिंग,
5: क्या बात है। उससे बड़ी अगर शादी का प्लान करे कभी फ्यूचर में, तो अंतरिक्ष को मत भूल जाना।
4: अच्छा वैसे अंतरिक्ष, आप हमें बताइए कि आप इवेंट मैनेजमेंट, मतलब आप क्या क्या रहता है आपका इवेंट मैनेजमेंट?
6: हमारे इवेंट मैनेजमेंट में सपोज जैसे भाई ने अभी आपकी बोला कि अगर आपकी शादी होती है तो आपकी आपकी क्यों नहीं होगी आपकी शादी, तो मैं कह रहा हूँ आपकी शेरवानी से लेकर आपकी दुल्हन की विदाई तक सारी जिम्मेदारी मेरी।
4: अच्छा, जैसे स्टेज एंट्री, कोरियोग्राफी, ये सब आपका
6: है? कुछ मेरे पास सारी टीम्स है।
5: ऑलराइट,
6: मेरी जैसे मेन जो मेरा फोकस होगा, जो मेरा होगा वो केटरिंग पे होगा और डेकोरेशन होगा।
5: ठीक है,
6: ठीक है। बाकी वेन्यू वगैरह जो पार्टी डिसाइड करने के लिए बोलती है वो हो जाएगा। बाकी मेरे पास अलग अलग टीम्स है, मेरे पास डीजे टीम्स है, मेरे पास प्रॉपर जैसे शोज होते हैं उनकी टीम्स है, मेरे पास होस्ट करने वालों की एक टीम है, मेरे पास हर चीज की एक प्रॉपर टीम रहती है, और वो सारा बजट के ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है सारी चीज।
4: अच्छा, तो अंतरिक्ष अभी तक कितने इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं?
6: मैंने जो अभी अभी ऑफिशियली मैंने एक नाम निकाला है, वैभव लक्ष्मी केटर्स, ये मेरी दादी के बेस पे नेम है। अभी मैंने इसमें 3 प्रोग्राम्स करे हैं, जिसमें एक जिला जज के यहाँ मुरादाबाद में ही करा था, उनके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने सारे जजेस वगैरह को बुलवाया था, तो वो एक ऑफिशियल इवेंट हो गया। वरना अनऑफिशियली क्योंकि मेरे नाना भी ये काम करते हैं, मैंने कम से कम 500 प्लस इवेंट्स कर दिए होंगे।
5: वेरी नाइस यार,
4: 22 की एज में आपने
5: अपने आप में
4: बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इवेंट मैनेज करना।
6: बहुत मजा आता है, आप यकीन मानो, एक शादी का फंक्शन इतना मजेदार होता है ना, संगीत, हल्दी, जो लड़का लड़की की तरफ से जो कजिन्स वगैरह आते हैं उनकी मस्तियाँ,
5: और आजकल तो सब एक ही बैकग्राउंड में हो रहा होता है,
6: सब एक ही,
5: सब लड़का वाला यहाँ बैठा हुआ है, लड़की वाली यहाँ, और सब एक साथ ही यूनिफ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
6: बहुत मजा आता है, मतलब उससे बेटर मैं मानता हूँ ना, एक फीलिंग अगर आप जुड़े हुए हो ना उन लोगों से, तो आप जुड़ जाते हो उनके साथ, आप गाओगे नाचोगे उनके साथ, एक फैमिली का पार्ट बन जाते हो आप।
5: करेक्ट, और आपको पता होता है कौन फूफा जी है, कौन चाचा जी है,
6: कौन
5: किसके साथ कैसे
6: कलेश करने वाला है, कौन कुछ करने वाला है,
5: सारी चीजें आपको पता होती है। तो गाइस ये जो हैप्पी मोमेंट है डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, एंड अंतरिक्ष से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। 22 साल का एक लड़का जो अपने करियर की तरफ आगे बढ़ चुका है, एंड हमारा मेन मोटिव है इनको बुलाने का कि अगर आप इस एज में कुछ नहीं प्लान कर रहे हो तो वक्त आ गया है कुछ इनिशिएटिव लेने का और कुछ बेहतरीन करने का। वो कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: वेलकम बैक है आपका फिर मुरादाबाद 89.6 पर और हमारे साथ है अंतरिक्ष गुप्ता और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे 22 इयर्स की जो एज होती है उसमें लोगों को क्लियर नहीं होता अपना विजन कि लाइफ में क्या करना है पर फिर भी अंतरिक्ष ने इतना इवेंट मैनेजमेंट वो संभाल रहे हैं।
1: इनफैक्ट वो स्टडी भी कर चुका है अपनी ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। मेरे को पहले देख के लग रहा था ये 30-35 साल का बंदा तो नहीं है, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो बट अभी जब पता चला ये 22 साल का है तो मेरे को लगा नहीं यार तो बिल्कुल एकदम फ्रेंडली एकदम यंग एज का लड़का है तो हम मतलब ऐसे करके बात कर सकते हैं एज ए फ्रेंड
2: बिल्कुल
1: कर सकते हैं ना भाई। अभी अंतरिक्ष आपने बोला यार भाई कि यहाँ पे हम लोग जब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हमें होस्ट भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टीम्स आपके पास होती है तो कहीं ना कहीं होस्ट का काम तो हम दोनों भी कर रहे हैं प्राची, तो फिर हमें कब जॉब दे रहे हो आप?
2: नेक्स्ट इवेंट जब भी होता है आपकी
1: हमें भी तो पता होना चाहिए
2: बातचीत बिल्कुल।
1: हाँ तो भाई मतलब और वैसे नो डाउट आप भी अच्छा बोलते हो तो आप कभी करते हो खुद से?
2: मैंने
1: कभी थॉट आता है कि यार मुझे भी करना चाहिए?
2: अभी रिसेंटली एक मौसी की सालगिरह थी तो उसमें करा था
1: एंकरिंग किया आपने?
2: उसमें एंकरिंग करी थी।
1: वेरी नाइस। तो आपको कैसे पता लगा कि यार मुझे भी बोलने का बहुत है यू नो एक क्रियोसिटी है मेरे में भी ये चीज? थोड़ी देर पहले आपने बताया आप गाने का भी आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ बैठा है, आपने फादर को देख के सीखा है, सारे मल्टी टैलेंटेड लोग इनके घर में बैठे हुए हैं, मजे की बात ये है। हाँ जी
2: गाने का तो ऐसा है कि मेरे फादर को ना पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है तो वो गुनगुनाते भी बहुत है। उनका अपने टाइम में खुद का बैंड था जिसमें वो गाते थे, उनका एक फ्रेंड था जो गिटारिस्ट था बहुत अच्छा और एक था जो पियानो बजाता था बहुत अच्छा, तो उनका एक पूरा बैंड था, ये लोग MTV में होके तो खैर उनकी वो पूरी जर्नी देख के मेरे को भी बीच बीच में वो गाते रहते थे, मेरे को भी शौक आ गया थोड़ा थोड़ा गाने का। तो हाँ मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ अच्छा। और बोलने का ऐसा है कि मेरे को ना सोशल टॉपिक्स पे बोलने का बहुत शौक था,
1: ठीक है,
2: मेरे को अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंसेस करे लोग उन्हें जाने, मैंने जो शायद अपनी लाइफ में गलतियां करी जो मैंने अपने यूथ में गलतियां कर दी वो कोई और ना करे, तो मेरे को अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छा लगता है।
1: किस टाइप की विच अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो कैसी अवेयरनेस आप यू नो स्प्रेड करते हैं और अभी जो आपको मेरे जैसे आप जैसे यंग लड़के सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे अभी इस रेडियो के माध्यम से?
2: मैं अपने उम्र के बच्चों को या मुझसे भी जो 2-3 साल जो अभी 11th-12th कर रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि यार देखो अभी तुम्हारी फैमिली ना बहुत चीजों को लेके प्रेशर डालेगी, बोलेगी कि हाँ आप ये कर लो आप वो कर लो, वो उनके हिसाब से गलत नहीं है, वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही चीज है, वो आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्लोर जरूर करना कि आपके अंदर क्या पैशन है, आपका किस चीज में दिमाग लगता है। मैंने 9th से 12th तक अपने आप को एथिकल हैकिंग में डाला था, हाँ मुझे हैकिंग बहुत अच्छी लगती है बट उसमें मैं अपना करियर नहीं मानता हूँ। मैंने आगे अपनी सिंगिंग एक्सप्लोर करी, अब फाइनली मुझे मेरा एक वो मिल गया कि हाँ मैं इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता
1: हूं। मिल गया आपका क्लैरिटी, आपको मिल गई
2: क्लैरिटी मुझे मिल गई है तो वो इसलिए मिल गया क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में गलतियां करी हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो खुद गलती करके सीखते हैं और एक वो जो सामने वाले की गलतियों से सीख लेते हैं।
1: करेक्ट।
2: तो वो आपको करना जरूरी होता है।
1: आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
2: मैं खुद की गलती करने वाला, मैं नहीं समझ सकता दूसरे की
1: क्योंकि मुझसे बोलता है। अगर आपको सीखना है तो आपको अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा, या तो आप गिव अप करके बाहर निकल जाओ मतलब छोड़ दो या फिर आगे बढ़ जाओ, उन्हीं गलतियों को सीख के, गलतियों को पीछे छोड़ के आपने आगे बढ़ना है ना।
2: और एक वो है एक गाना है जो अगर आपने सुना हो, मैं जिंदगी का साथ निभाता
1: चला गया,
2: तो वो जो उसकी लाइन है ना कि मैं जिंदगी साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये जो दो लाइनें है ना आपको हमेशा वैसे ही रहना चाहिए, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप इस टाइम पे अपने आप को देखो अपने करियर को देखो, बाकी सारी चीजें तो हैपनिंग होती रहती हैं लाइफ में।
1: एब्सोल्युटली बहुत अच्छा आपने बोला है और बात इतने प्यारे गाने की हुई है तो प्राची गाना सुन ले। इसी गाने को सुनते हैं और ये गाना शायद आपको भी आज की इस बेहतरीन सी मैं आपको थोड़ी फील दे दे कि आप भी कुछ करने पे मजबूर हो जाएं। एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं उसके बाद वापस मिलते हैं, आप कहीं मत जाओ, सुन रहे हो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक। एक बहुत ही अच्छा गाना भी आपने सुना, एंड ऑफ कोर्स ये गाना सुन के आपको भी मजा आ गया होगा। भाई बहुत मजा आया। प्राची टेल अस, तुझे कैसा लगा गाना? सो रही थी तो उठ, जल्दी उठ।
1: गाना तो बहुत अच्छा था, मुझे पता चला कि अंतरिक्ष को भी बहुत अच्छा गाना गाना।
0: क्या बात है, ये सीधे मुद्दे की बात पे आ जाती है, मतलब बहुत टैलेंटेड है ये लड़की सीधा। ये जो है भाई साहब, ये वहाँ पे पकड़ती है नवज को, जहाँ इसको पता है यहाँ से सारी बीमारियाँ निकल जाएंगी।
1: क्योंकि अभी अभी हमने आपको अभी ब्रेक में हमें सुनाया था ना अंतरिक्ष ने गाना, तो वो बहुत ही अच्छा था।
0: चलो अंतरिक्ष
1: हमारे लिसनर्स को भी आप सुना दीजिए।
0: हाँ बिल्कुल, अंतरिक्ष भाई आपका वेलकम बैक है। एंड ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले हम गाने शाने की बात कर भी रहे थे, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है वैसे?
2: मेरे फेवरेट
0: कितने
2: singer?
0: सारे सिंगर हैं, ये तो कुछ नहीं बेकार
2: है। तो नहीं होता है किसी का भी। मेरे को के सुनना बहुत पसंद है, मेरे को सोनू निगम सुनना बहुत पसंद है, मेरे को अगर आप पुराने सिंगर्स की बात करो तो कुमार सानू सुनना बहुत पसंद है, किशोर कुमार सुनना बहुत पसंद है, लता मंगेशकर जी, आशा
0: यार। एक बात बताऊं, अगर असली म्यूजिक आपको सुनना है, असली गानों की आपको समझ चाहिए, तो आपको किशोर दा, लता, मोहम्मद रफी, आशा ताई, ये सब आपको बड़ी ऐसी क्लैरिटी देंगे।
2: एग्जैक्टली,
0: है ना। और बाकी सोनू निगम, कुमार सानू, ये अल्टीमेट अपने आप में,
2: ये तो बिल्कुल सही बात है।
0: लेजेंड बात अलग है, और जो हमने उनकी बात करी वो तो है ही नंबर वन के कमाल के कलाकार। तो आज कौन से सिंगर को आप जो है याद करने वाले हमारे रेडियो स्टेशन पे?
2: मैं सोनू निगम जी को याद करना चाहूंगा, उनका एक बहुत प्यारा गाना है अग्निपथ मूवी से, अभी मुझ में कहीं।
0: क्या बात है, ब्यूटीफुल
1: ट्रैक,
0: आई लव दिस ट्रैक। हम दोनों थोड़े से टिश्यू पेपर ले लें भैया, क्योंकि इस गाने को सुनते हमारे आंसू निकलेंगे, हमारा स्टूडियो भर जाएगा, तो हम बह ना जाएं।
2: नहीं नहीं
0: ठीक है, हाँ रेडी है टिश्यू पेपर हमारे, ठीक है मैं निकाल लेता हूँ।
2: ठीक है
0: टिश्यू पेपर निकाल लिए मैंने, आप शुरू करें।

0: थैंक यू।
1: अरे वाह त्रिक्षा, आपने बहुत अच्छा गाया, क्योंकि जो आप गा रहे हैं ना, मतलब बड़े ही दिल से गा रहे हैं ना।
2: करेक्ट,
0: ये गाना भी मेरे दिल के बहुत ही,
2: ये गाना हर किसी के दिल के बहुत करीब है भाई। बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा सोनू निगम साहब ने गाया है, और बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं, और बहुत ही अल्टीमेट एक्टर के ऊपर फिल्माया है। ऋतिक रोशन हम सभी के फेवरेट हैं यार, तो गाना ऑफकोर्स यार बहुत अच्छा, मजा आ गया आपका ये गाना सुनकर अंतरिक्ष जी। और सीरियसली आप बहुत कमाल के इंसान है, आपसे बहुत कुछ जानने को समझने को मिल रहा है, और जब आपके जैसा यंगस्टर आपके सामने बैठा हो तो नो डाउट कि आप उससे कितनी सारी बातें सीख जाएं, या आपको सिखा, वो आपको सिखा दे, आप उससे सीख ले, है ना। तो ये जो सिलसिला है चलता रहना चाहिए।
0: मैं मानता हूँ हर इंसान से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं।
2: हाँ।
0: हर इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे ही सीख सकते हैं।
2: Absolutely.
0: मैंने भी आज आपसे बहुत नई चीजें सीखी कि आप ऑन द स्पॉट लाइंस कैसे बना लेते हो,
2: और मैंने भी आज सीखी कि आप ऑन द स्पॉट कैसे अच्छी बातें कर लेते हो, ये मुझे आपसे पता चला। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा है, आने से पहले क्या दिमाग में चल रहा था कुछ पता था। वैसे मैं आपको लिटरली बताऊं गाइस, मैंने अंतरिक्ष जी को कॉल ही किया था, ना उनका नंबर मेरे पास है, ना मैं उनको जानता हूं, ना वो मुझे जानते हैं, बट यहां मिलने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इनको ये हमें नहीं जानते, ऐसा ऐसे लग रहा है आपको?
0: नहीं भाई, मुझे तो
2: मतलब इतने फ्रेंडली हो गए हैं, ऐसे एकदम जैसे लाइक कितने अच्छे फ्रेंड हैं अपन। और मैंने इनको कसम से बता रहा हूँ नहीं बुलाया था, बट सोचो ना यार, वही बात है कि जो आप सोचते नहीं हो कभी कभी लाइफ आपको वो चीजें दे देती है। ये आए थे अपने दोस्त के साथ एक शेरो शायरी का सेशन रिकॉर्ड करने, उनका तो सेशन पूरा हो गया, हमने कहा चलिए अब आपको भी जरा कनेक्ट कर लेते हैं। भाई इनकी आवाज, इनकी बात करने का अंदाज इतना अच्छा लगा। वैसे आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था क्या?
0: नहीं, मैंने आज ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था,
2: आज क्या आज से पहले भी नहीं किया हुआ है?
0: नहीं, मेरा एक था कि मेरे को आगे जाके जब मैं अपना बिजनेस अभी सेटल कर लूंगा, मैं फिर उसके बाद अपने प्रॉपर एक पैशन पे ध्यान दूंगा, जिसमें मेरे को पॉडकास्ट वगैरह और सिंगिंग वगैरह करनी है। लेकिन हाँ, आज से पहले अभी तक बिल्कुल की रीसेंट ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होने वाला है, मैंने नहीं सोचा था। इवन इनफैक्ट इस शो से 2 घंटे पहले कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई यार मेरे को ना एक शो में जाना है और ये लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे, तू चल ले मेरे साथ। मैं नॉर्मली था, मैं कहा ठीक है, ये इंटरव्यू देगा, मैं बैठ के सुन लूंगा, आ जाऊंगा वापस,
2: जैसे हर इवेंट में करते हैं, जैसे ताली बजाएंगे
0: वापस
2: वापस आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं था आज खुद ही पकड़े जाएंगे, वेल
0: सही बात है।
2: मतलब डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग था ये कॉन्वर्सेशन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको भी नहीं पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हमें भी यही पता था, हम सिर्फ ओम जी का इंटरव्यू लेंगे और बायो सायो नारा करके अपन शो बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता था उनके साथ एक और बंदा आएगा जो और भी अल्टीमेट निकलेगा, तो बहुत ही बढ़िया। और आप दोनों ही अपने आप में कमाल की चीज हो यार, भाई भी बहुत बढ़िया है और आपने भी बहुत अच्छा किया है। और इसी बात में प्राची गाना सुने, सोनू निगम साहब का अग्निपथ का गाना है ना, बहुत ही अच्छा भाई ने गुनगुनाया। तो उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, लौट के आएंगे तो फिर इनसे इजाजत लेंगे और कुछ अच्छे मैसेजेस भी लेंगे, और कुछ बढ़िया सा आपको हम भी अच्छा सा मैसेज देकर जाएंगे, डोंट वरी। फिलहाल सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6
1: रेडियो, बजाती रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: यार बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है इसी गाने के बाद। वेलकम बैक है सोनू निगम साहब की आवाज में। तो अच्छा गाना आपने एंजॉय किया प्राची, तुझे मजा आया सुन के? ऑफ कोर्स अंतरिक्ष को देखे तो मुझे बहुत मजा आ रहा है
1: अंतरिक्ष की आवाज में और सभी अब सोनू निगम की आवाज में हमने ये सॉन्ग एंजॉय किया, बहुत मजा आया,
0: बहुत मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड लिटरली अंतरिक्ष भाई आपसे बातचीत करके वन टू वन जो इंटरेक्शन था बहुत ही वंडरफुल था ये, एंड बहुत अच्छा लगा।
2: सेम हियर आनंद जी।
0: एंड आनंद जी आप बोल रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है मैं अंकल जी बन जाऊं, यार ऐसे मत बोलो भाई, आनंद जी बोलोगे तो फिर हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा, हमारी आवाजें बदल जाएंगी, दुनिया बदल जाएगी प्राची, हालात जज्बात सब बदल दिए यार इसने तो, ऐसे मत बोलो आप।
2: एक मिमिक्री मैं भी कर सकता हूँ
0: प्लीज, मोस्ट वेलकम यार, अगर आप फैंटास्टिक हैं तो करो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है?
0: हाँ यार देखा है।
1: वो तो मुझे
0: आपको हम सभी का फेवरेट भी है यार।
2: ऑगी के भाई का जैक का पता है वो कैसे बोलता था?
0: जैक शायद मुझे इतना याद नहीं आ रहा
1: था, पर मैंने देखा है, मुझे ऑगी के उसमें डायलॉग्स होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे।
2: मैं आपको एक उसकी आवाज में बता दूं, ओए ऑगी आज हमें इन कॉकरोचेस को मारना होगा और हम इन कॉकरोचेस को मार के सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर तू शांति से बैठ सकता है, तू टेंशन मत ले। ओए ऑगी
0: ओए आपकी मिमिक्री बहुत ही अच्छी थी बाबूजी, मुझे बहुत पसंद आई, जोरदार तालियां हैं आपके लिए।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
1: बहुत जोरदार ताली है
0: एब्सोल्युटली। जो किसने बजाई नहीं वो बात अलग है। चलिए वेल आगे बढ़ते हैं एंड बहुत अच्छा लगा यार, लवली मीटिंग यू एंड लवली टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली बचा के रखते हैं क्योंकि अभी लौट के भी आना है आपके साथ, फिर कभी ना कभी किसी न किसी ट्रैक में मिलेंगे। और आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो और बहुत सारी चीजें और भी आप कर ही रहे हो, एंड आई थिंक अभी आगे चल के आप और भी चीजें अच्छी करोगे क्योंकि हमें नहीं पता, हमारा दिमाग नई नई चीजों को ढूंढता है। एंड आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आपको और नई नई चीजें मिलेंगी बहुत बेहतरीन, जिन्हें आप यू नो करना चाहोगे अपनी लाइफ में, बहुत जरूरी है यार। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतरिक्ष, ऑल द वे बेस्ट हमारी पूरे एफएम इंटायर फैमिली की ओर से। एंड आप सोशल मीडिया ऑफ कोर्स यूज करते होंगे, आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो अगर किसी को इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये मैनेजमेंट आपका देखना हो, आपके पेजेस देखने हो, तो आप कहां पे क्या यू नो कैसे मैनेज कर रहे हो सोशल मीडिया? बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो यार
2: मेरा एक वैभव लक्ष्मी केटरिंग के नाम से एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आप मेरी पर्सनल आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको अपनी पर्सनल आईडी दे सकता हूँ इंस्टाग्राम
0: पे, तो हम भी फॉलो
2: वो ज्यादा बेटर।
0: जल्दी से बताओ,
2: उसमें है अंतरिक्ष जीपीटी 18 अंडरस्कोर अंडरस्कोर और अंतरिक्ष में एच जो है ANTRIKSHHGPT18
0: GPT
2: गुप्ता की शॉर्ट,
0: चैट जीपीटी नहीं है ये
2: नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, ये अंतरिक्ष जीपीटी है,
0: ये चैट जीपीटी तो नहीं लगा के बैठा हुआ है भाई। वेल थैंक यू वेरी मच यार भाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक डाला हुआ है अपना नाम, मतलब अपने पूरा तुमने अपने इंस्टाग्राम में अपना पूरा बायोडेटा दे दिया है। अंतरिक्ष
1: जीपीटी हम लोग यूज करते हैं ना, इसलिए अंतरिक्ष जीपीटी कुछ आ गया,
2: अंतरिक्ष जीपीटी
0: कुछ नया सा आ गया है आजकल, ये पार्टी वो पार्टी, अब ये
1: इवेंट मैनेजमेंट है तो मतलब सब कुछ ही है यार ना, सारी चीजें हैं।
2: करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये ठीक है, जीपीटी बहुत सूट कर रहे हैं ना।
0: कैसा लगा आपको बात करके?
2: थैंक यू सो मच,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: चलो मुझे भी अच्छा लगा और थैंक यू अंतरिक्ष भाई, और बाकी बाकी अपनी पोटली को संभाल के रखते हैं, फिर आपसे डेफिनेटली मिलेंगे। एंड जाते जाते कुछ मैसेज अगर तुम कन्वे करो हमारी ऑडियंस को तो हमें भी अच्छा लगेगा, और कोई गाना जो आप चाहोगे जाते जाते मैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ आनंद, आज आपके शो से कोई गाना जो आप डेडिकेट करो मेरी ऑडियंस को जाते जाते।
2: एक सोशल मैसेज जो मैं सबको देना चाहता हूँ, सोशल मैसेजेस तो मैंने देखो इस पॉडकास्ट पर भी 2-3 दे ही दिया, तो मैं कोई आपको अपनी बातों से बोर नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा।
0: वैसे आपकी आवाज में वो बोरियत है नहीं, बोरियतनेस जिसे हम कह सकते हैं
2: ये तो आपका दिखे बड़प्पन है, बट ठीक है। मैं एक सोशल मैसेज ऐसा कि यार देखो आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, आपको अपनी लाइफ में उस चीज को करते हुए हो सकता है बहुत ज्यादा डाउट्स हैं आगे जाके,
0: करेक्ट,
2: आप उन डाउट्स पे ज्यादा ध्यान मत देना यार, जो आप कर रहे हो करते रहो, कभी ना कभी आपको उस चीज में सक्सेसफुल आप जरूर होगे, और कभी आप किसी चीज से ना हार मत मानना,
0: करेक्ट,
2: जो हार नहीं मानते हैं वो आगे जाके जीत जरूर जाते हैं, बस ये मेरा एक सोशल मैसेज आएगा। बाकी गाने तो बहुत सारे हैं जो आप मेरी ऑडियंस को सुना सकते हैं, आप एक एक का गाना सुना सकते हैं, क्यों आजकल नींद कम खाब ज्यादा है,
0: क्या मुझे बहुत अच्छा गाना है। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू भाई, और गाना भी बहुत अच्छा आपने यू नो जाते जाते डेडिकेट कर दिया है हमारी ऑडियंस को। तो ऑडियंस यानी कि मुरादाबादी आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, आप भी इस तरह से कुछ अच्छी बातें करते हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, तो आप प्लीज आइए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आरजे आनंद को आप मैसेज कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, आप मुझे चेक कीजिए, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ, वहाँ आइए, हमारी ऑफिशियल आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, एफएम मुरादाबाद 89.9 91.6 FM की ऑफिशियल आईडी है, वहाँ के भी आप अपना टैलेंट मुझे डेफिनेटली डीएम करें अपना नाम और नंबर, हम जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे एंड हो सकता है नेक्स्ट नंबर कहीं लग जाए यार, है ना। तो अगर आपके पास भी ऐसा अच्छा टैलेंट है तो प्लीज यू हैव टू कम एंड हम आपको चौड़े में इन्वाइट कर रहे हैं। प्राची क्या कहना चाहेगी जाते जाते?
1: हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 देता है आपको प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपना टैलेंट हमारे साथ शेयर कर सकते,
0: प्राची की तरह अच्छी बातें कर सकते हैं। तो प्राची
1: और हमारा नंबर है 9837896896।
0: बिल्कुल, इस नंबर पे भी आप अपने नाम के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, जल्दी आपसे मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहाँ करेंगे ढेर सारी बात और होंगी फिर आपसे और भी मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल, मस्त रहो, झकास रहो, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है यार, इसे एंजॉय करते रहो। ज्यादा लोड लेके कहाँ जाओगे यार, तुझे जरा टेंशन मत लो, गाड़ी चला रहो, मुस्कुराते रहो। क्या बात है यार, मुस्कुरा दिया आपने, कमाल कर दिया यार। इसी बात में के गाना छोड़ के जा रहा हूँ, मस्त रहो, झकास रहो और ऐसे ही कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते
0: रहो, बाय बाय।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

என்ன ஆயா இது?

0: चतुरा गोला चतुरा एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद। याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।